0: एक्टिविटी जहां हम चाह रहे थे कि हमारे इंसाफ मिलना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे 5 लोगों की जान ले ली और मजबूरन निर्दोष 100 लोग से ज्यादा लोगों को जेल में रहना पड़ा।
1: सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा, इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं न जाने और कितने मारे जाते।
2: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आतेर मसाला।
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
5: कौन?
3: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
8: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
9: This location from Tel Aviv
8: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
10: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
11: The IR

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
4: और
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।

0: divided into two of these tents, one at the entrance where Mr. Mahato of the Jharkhand Krantikari Morcha, he is the leader of that morcha, and he's been sitting on protest for that. You will see the kind of melee that is happening, a lot of people coming in from that protest site as well, and they have arranged this food and other things for the protesters, those who have continuously been standing here. This is where half of the protest is. They used to be together, but when the students felt that there is a lot of political interference, entire stadium, which has been a Krantikari sort of a stadium for many, many years, is seeing a protest where on one hand is Mr. Mahato. Of course, he's in his own political outfit, fought an election. He's demanding for the same demands as the students have been. Bahut bahut shukriya, thank you so much. Kya naam hai aapka?
1: Nityam Jha.
0: You know, I was just walking and this gentleman just put his umbrella over my head. I just want to show you, this is the stage, the protest. This is where everything is being, in fact, more or less being controlled from. Shibu Soren, father of Hemant Soren, or a legendary figure as far as politics of Jharkhand is concerned. And you would all see, Bhagat Singh's picture there. You will see Birsa Munda. You will see Baba Saheb Ambedkar. You would also see B.R. Ambedkar. And there is Mahatma Gandhi as well. And that's where all these people say that they are drawing their strength. These are the students. Aap mein se kaun kaun abhi hunger strike par hai? Aap hain, aap hain. Aap charo log hunger strike par hain. This is the demand. Yehi mudda hai, yehi demand hai.
2: जेएसएससी और जेपीएससी में जितने भी एग्जाम में धांधलियां हुई है ना, सभी एग्जाम में सीबीआई और ईडी की जांच करने की मांग चल रही है।
0: आपको लग रहा है कि 25
2: छोटा मुद्दा है, इससे बड़ी बड़ी मुद्दा है वहाँ पे है। इतना अंदर तक धांधलियां हुई है ना कि कोई नहीं बता सकता है।
0: से आप बैठी है भूख हड़ताल?
2: हम भूख हड़ताल कल से बैठे हुए हैं, इससे पहले 12 दिन तक यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लड़की होके आंदोलन पे बैठे हुए हैं। वो हमको मजबूर किया गया है यहाँ आंदोलन पे बैठने के लिए।
0: हेमंत सोरेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई मीन इफ यू आर वॉचिंग बाय एनी चांस दिस शो, लिसन टू हर्ष, बिकॉज दे बिलीव दैट इफ हेमंत सोरेन कम्स हियर, दैट एटलीस्ट शोज दैट द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ दीस प्रोटेस्टर्स।
3: वेल, 12 डेज इनटू द जेपीएससी प्रोटेस्ट एंड 2 डेज इनटू द हंगर स्ट्राइक, झारखंड स्टूडेंट्स कन्फ्रंटेड हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी इन अ ड्रामेटिक लाइव फेस ऑफ ऑन एनडीटीवी। The students rejected attempts to politicize their agitation, insisting that they are fighting only for a fair recruitment process, cancellation of the disputed JPSC results, and a CBI probe. They in fact questioned the government's delay in responding, highlighted alleged irregularities in recruitment, and spoke about the uncertainty surrounding their future. Listen in.
4: Development हुआ है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रभारी के राजू सर ने आज एक आपात बैठक बुलाकर युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन कराया गया है, जिसमें 4 मंत्री भी हैं। तो जो बच्चे वहां पर हैं उनसे हमारी टीम वार्ता करेगी, उनकी जो भी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये धरना में मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग जा रहे हैं, व्हाई दे विल गो, हु अलाउ हिम, और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ भाजपा जो है इनकी नीति और नियत में खोट है, युवाओं का आंदोलन को कुचलना
5: चाहते। धरना है वो तो बच्चों का धरना है ना, उसको आप भाजपा का धरना क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड,
4: आज मैम
5: ये तो युवाओं का धरना है, पहले दिन से हम जब बात कर रहे हैं
4: भाजपा
5: तो मंच तो युवा संभाले हुए हैं, उसमें भाजपा का क्या लेना देना?
4: मेरी बात सुन लीजिए, कई भाजपा के लीडर आज वहां गए और हम लोग उसका रहे हैं।
5: एक सेकंड, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, चंडी कुछ बोल रहे हैं आपसे।
6: सर, हम बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिकारी भविष्य बनाने आए हैं। ये झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं जलता है, झारखंड में स्टूडेंट के भविष्य को भी जलाया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सर, हमारा एज जा रहा है, हमारा माता पिता परेशान है,
7: कोई नेशनल
6: कुछ कर पा रहे हैं सर, माता ऐसा सिस्टम कर ही नहीं पा रहे,
5: क्योंकि इसको अगर आप पार्टी में बांट देंगे, इरफान अंसारी जी एक सेकंड, जस्ट कीप चंडी तिवारी एंड इरफान अंसारी ऑन स्क्रीन फॉर अ सेकंड, अगर आप इसको कह देंगे कि भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां धरना, भाजपा ओवरटेक कर रहा है, नहीं, पहले दिन से ही यहां पर जो बच्चे हैं, जो सीबीआई की डिमांड उठ रही है, जो सरकार से बात करने की डिमांड उठ रही है, वो तो आम बच्चे उठा रहे हैं। अगर वहां पे लोग आ जा रहे हैं, भाई आप भी जंतर मंतर पर आ जा रहे थे ना, आपके नेता भी जा रहे थे, सपा के नेता भी जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनकी जो डिमांड थी वो नाजायज हो जाती है। इरफान साहब, जब आप उसको बेवजह का नाटक बोलते हैं, तब तो फिर आप उसको एक राजनीतिक प्रिज्म से देखें।
4: मैम, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये दिल्ली का धरना है नहीं, दिल्ली में नीट का जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये लाखों लाख बच्चे प्रभावित हुए, भाजपा ने उन पर गोलियां चलाई, बच्चों को मारा, आपने देखा होगा वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। ठीक, अगर आप कंपेयर करें झारखंड की जेपीएससी की, तो मैम यहाँ पर 300 सीट है, मात्र 300 प्लस सीट है, इसको लेकर छात्र धरना पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ। टू बी फ्रेंक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आज जेपीएससी के चेयरमैन को बता दिया गया है, कई लोग हिरासत में है, जांच चल रही है, और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। आज बैठक में हमने अपनी बात को रखा, सीएम साहब भी थे, हमारे प्रभारी के राजू सर भी थे, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो लोग, आज बरसात में देखिए वो लोग भींग रहे हैं, उनकी जो भी मांग है हम लोग को जानना चाहिए, सुनना चाहिए।
1: हम लोग बरसात में भीग रहे हैं सर, अभी जी खड़े हो, हम ये कहना चाहते हैं सर, छाता लेके ये देखिए हम लोग छात पे हैं,
6: आप नहीं आ रहे सर, आप क्यों नहीं आ रहे,
1: आप एक बार आकर तो बात
6: कर सकते हैं ना, रांची में कितना दूर है सर, आप रहते हैं, आ जाइए हमारे पास,
1: हम लोग को तकलीफ तो सुनने को कोशिश की।
3: Meanwhile, Congress MP Imran Masood spoke exclusively to NDTV on the biggest political flashpoints of the student protests in Jharkhand. Listen in.
5: छात्रों से ही आप कह रहे हैं, छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए, आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहां पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मन साझा कीजिए।
7: हाँ, बिल्कुल सही है, मैं अभी इसके बारे में जानकारी मैंने आज मुझे लगा कि उसके बारे में, क्योंकि ये काफी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से हम कल तक इस पे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो
5: विषय डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं,
7: एक सेकंड सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज गोली चलाना उनको।
5: पर इमरान जी, बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे बच्चे हैं, रांची के बच्चे बच्चे नहीं,
7: तो बच्चों पर वहाँ लाठी चल गई क्या?
5: लाठी नहीं चली, पर वहाँ भूखे बैठे हुए हैं,
7: लाठी चल गई क्या?
5: अरे उनकी नौकरियाँ चुराई जा रही
7: है, वहाँ लाठी चल गई क्या? देखिए मैंने
5: कहा लाठी चलने पे ही आप उनके साथ जाएंगे?
7: नहीं, मैं
5: उनकी नौकरी चुरा ली जाएगी, आप उनके साथ नहीं जाएंगे?
7: मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे कोई जवाब बहस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पिछले 10 दिन से इतने लगे हुए हैं कि मुझे जानकारी नहीं पूरी प्रॉपर, मैं आज मुझे इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं कई जगह से मुझसे सवाल हुआ, तो मैंने भाई मैं कल ही बात पर कहूँगा, आज इसकी पूरा का पूरा डिटेल लेता हूँ क्या है।
5: पर ये अजीब सी बात नहीं है कि आप हमेशा छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ हम खड़े हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर जहां से गूंज सच में उठाई दे रही है, उठाई जा रही है रांची में, उनकी गूंज आपको सुनाई नहीं दे रही है? दिल्ली में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, प्रयागराज में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ।
7: मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज इसकी जानकारी जरूर लूंगा, और निश्चित रूप से कल को आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा, हम चुप रहने वाले लोगों में नहीं है।
5: क्योंकि वहां के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसीलिए आप उनको एकदम एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं।
7: हम इग्नोर,
5: आप सिर्फ जो ऑपोजिशन, जो बीजेपी वाले शासित राज्य होते हैं वहीं पे आपको गड़बड़ी दिखाई देती
7: है। नहीं नहीं, हम तो छात्रों के ऊपर गोली चलाने के ऊपर है, आप छात्र एक बात बताइए, बच्चे के यहाँ गोली लग रही है शोल्डर के अंदर, पिस्टल की गोली, AK-47 से आप गोलियां चला रहे हो बिहार के अंदर, यहाँ पैलेट गन मार रहे हो, और पार्लियामेंट में आप बयान देते हो कि हमने गोली नहीं चलाई, मतलब ये कितना गलत बयान ही का काम हो रहा है। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा?
5: और झारखंड में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए?
7: किसी झारखंड में लाठी चले डंडा चले तो जिम्मेदारी सरकार की होगी,
5: पर झारखंड में नौकरी चोरी की भी तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना?
7: नौकरी चोरी का मुझे जानकारी देखिए, जब तक मैं विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आज जानकारी ले लूंगा, कल आपको अगर होगा उसके अंदर 100% आपको बोलता
5: हूं। आपको लगता नहीं है कि 12 दिन से कम किसी को सरकार में बातचीत करनी चाहिए थी? यहाँ पर जंतर मंतर में बातचीत हुई, पैनल बना, वहां पर बच्चों के लिए जो टेंट था वो भी हटा दिया गया, वहां पर
7: मुझे तो ये पता ही नहीं, जितना आप बता रही है ना, मुझे जानकारी नहीं है, अगर मुझे जानकारी होती मैं 100% बोलता।
3: Well, Congress leader Rahul Gandhi has thrown his weight behind knee aspirants, alleging that they were assaulted, they were threatened, and silenced for demanding accountability over examination irregularities. Rahul Gandhi praised the students for speaking out and renewed his attack on what he described as a broken examination system. The BJP, though, has hit back sharply. Party spokesperson Sambit Patra rejected Rahul Gandhi's allegations, insisting that no shots were fired. That's what Sambit Patra said on record during the protest and accused the Congress leader of playing politics with students and children. The BJP went on to question Rahul Gandhi's silence on the ongoing recruitment protests in Jharkhand as well. Listen in to that face-off.
8: The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for his for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened.
9: Magar झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे।
3: You've just heard the reactions. The political war over the student protests has now turned into a face-off between Rahul Gandhi and the BJP's Sambit Patra. Rahul Gandhi is flagging concerns over education and issues concerning the youth of our country. Sambit Patra, meanwhile, is accusing him of selective outrage while questioning why he didn't visit Jharkhand. On that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking currently. Well, as per the latest details coming in, Rahul Gandhi's proposed interaction with students in Prayagraj has triggered a political controversy now, even before he's arrived. The Uttar Pradesh Congress unit has alleged that permission for the venue, which is basically a sports complex in Prayagraj, was granted and then cancelled at the last moment under pressure from the BJP government. The state Congress chief Ajay Rai claims that the party had paid the required fee and has accused the government of trying to prevent Rahul Gandhi from interacting with young people over issues such as paper leaks and unemployment. The BJP has not responded to these specific allegations yet. Listen in to what Ajay Rai has said in detail.
10: हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्ज्वल भविष्य की बात कर रहे हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ना उसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, ना कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को, उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में।
3: अजय दुबे जॉइंस अस विद फर्दर क्लैरिटी एट दिस स्टेज। Ajay, the Congress alleging permission was formally granted, then permission was suddenly withdrawn. Has the administration given any written reason for this cancellation, or has the administration even addressed this in public?
11: We are also trying to get the details from the administration, but the important part is that Congress was preparing for this event. They have booked the space, they were booking for the catering services and the other services, payments were made. But now, with such change, the cadre of Congress and the leaders of Congress are very aggressive on this issue. They are accusing government for doing such things. We are also trying to get details on this from the administration of Prayagraj, yet they have not commented anything about this issue. So this is earlier the Congress was claiming it's not a political event, but because of this cancellation process, it has become a political situation where the opposition, they are opposing whatever is happening regarding this Prayagraj event, what Rahul Gandhi was about to come to Prayagraj, but now the permission is cancelled.
3: Ajay, tell us, so has the Congress party identified an alternative venue, or is it challenging the cancellation administratively?
11: Still, Congress administration, Congress leaders are looking for the option where they can organize this event. they are looking for the option. The MP from the Prayagraj, he is also looking for Mr. Ujjwal Raman Singh. He is an MP from Congress. What he is informing us is that they are also looking for the option. But still, for that option, they need permission from the government, and the leaders are telling they have cancelled permission one time. We don't know will they allow us next time or not. So the Congress leaders, they are looking for the option where they can organize this event.
3: All right, Ajay, we'll of course keep in touch with you to see whether the administration in Uttar Pradesh responds, because so far they have said nothing. There's no written cancellation request also that has been sent to the Congress. We'll of course keep tracking what the Congress says regarding the matter too. Meanwhile, the battle over delimitation is back at the centre of national politics, and this time the negotiations appear to have begun before the bill returns to Parliament. Even as Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju ruled out a special session, sources tell NDTV that the government is exploring reintroducing the delimitation bill as early as next week and has also begun informal outreach to opposition parties behind the scenes. Mr. Rijiju met Rahul Gandhi to discuss possible changes to the earlier bill aimed at addressing concerns that have been raised by southern states. But sources are telling us that the Congress has given no commitment so far. The Congress maintains that its position remains unchanged. The Trinamool Congress and the Samajwadi Party, they have also said that they have not been consulted. So at this point, the larger political question is whether the government can build a broader consensus on an issue that has potential to reshape our country's electoral map for decades, or whether delimitation is headed for another parliamentary confrontation.
12: Government, today Parliamentary Affairs Minister met Kiran Rijuji for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us. Because some rumors are telling he spoke about delimitation, then we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, it is still we are on that stand. There is no change on that. Opposition stand is very clear that.
13: Women's reservation bill need not be tied to the delimitation bill. The women's reservation can be given effect right away, and 181 seats can be reserved for women in a parliament of 543. We have some very strong objections to the delimitation on many counts. One on increasing the size of the house, one on the basis of population, one on a uniform 50% increase. That entails a constitutional amendment to the fact that it can't be on population. So there are a lot of technical steps which also need to be overcome in order to bring about delimitation. But whatever formula the government proposed last time was a disadvantage. If they're coming up with a new formula, we'll have to study it. But in principle, we believe that Tamil Nadu, particularly states which have implemented family planning.
14: उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारे लीडर्स को रीच आउट करने की कोशिश की थी. हमारा जो स्टैंड है, अपोजिशन का जो स्टैंड है, उसको बहुत पहले हम लोगों ने क्लियर किए हैं. पिछली बार जब परिसीमन बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, उस टाइम हमारा जो स्टैंड था और अपोजिशन का जो स्टैंड था, वही स्टैंड अभी भी है. उसी स्टैंड के साथ हम आगे बढ़े.
15: जी बिल्कुल, डिलिमिटेशन बिल के बारे में हमारा यही रवैया है कि हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बहाने ये जरी मैंडरिंग करके हर कॉन्स्टिट्यूशन टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, जो आसाम में किए, जम्मू कश्मीर में किए. उसी प्रकार से पूरा जो उनके मेजॉरिटी है उनको एक ब्लॉक में सीमित रखना चाहते हैं, जो हम पिछली बार भी अपोज किए थे, अभी 3 महीने पहले लेके आए थे, सदन में पारित नहीं कर पाए संविधान को बदलने वाला बिल. तो इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि ये सदन में चर्चा हो, चंदा चोरी के ऊपर चर्चा हो, छात्रों के ऊपर जो लाठी चलाई गई है, पैलेट गन चलाया गया, टीयर गैस चलाया गया, उसके ऊपर चर्चा हो, गृह मंत्री आके जवाब दे.
16: अभी हमारे सामने कुछ प्रस्ताव नहीं आया, इससे सुनाई देता कि बीजेपी ऐसा कर सकता है. हमारा समर्थन नहीं है, अचानक क्यों करेंगे? बोलो नहीं, हम तो विरोध भी करेंगे.
14: कोई औपचारिक सूचना हमें नहीं है. जब हम लोगों का अधिकारी कुछ सूचित करेंगे तो राष्ट्रीय विचार
17: जी. अभी तक सरकार ने बातचीत नहीं की
14: हमसे कोई बात नहीं हुई, ना हमें कोई सूचना इस बारे में.
17: तो परिसीमन के नए स्वरूप को लेकर बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा और गतिरोध बना रहा.
14: हमारा वही स्टैंड है जो पिछले सत्र में था.
17: क्या
14: महिला बिल को लागू किया जाए, डिलिमिटेशन से उससे नहीं जुड़ा जाए.
3: the standoff between the government and Meta is entering another crucial round today. A day after Meta's global affairs chief, Joel Kaplan, met senior government officials, the company and the Ministry of Electronics and Information Tech are set to hold another round of discussions, with the focus extending well beyond the brief removal of Prime Minister Modi's Facebook video. Meta has confirmed to us that Joel Kaplan personally apologized to the minister over the restriction placed on the Prime Minister's post. In fact, sources have said that Mark Zuckerberg has conveyed his regret over issues relating to China.

0: कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने हमारे 5 लोगों की जान ले ली और मजबूरन निर्दोष 100 लोग से ज्यादा लोगों को जेल में रहना पड़ा।
1: सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं, वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम ढाला गया होगा, इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है, ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं, न जाने और कितने मारे जाते।
2: जो प्रमुख नाम आए हैं वो हैं जियाउर रहमान बर्क मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुहैल इकबाल पुत्र एमएलए इकबाल महमूद, एडवोकेट अफजल अली मसूद अली फारूकी जो कि इस शाही मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में थे। ये पूरी तैयारी से आए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और इनकी जो भी मांगे थी वो पूरी तरीके से असंवैधानिक थी।
3: जो बातें सामने आई हैं जांच के बाद ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं समझता हूं कि सरकार करेगी ही, करनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देशद्रोह का काम है, ये समाज में अराजकता फैलाना और समाज को विभिन्न भागों में बांटना और यहाँ अशांति अराजकता फैलाना, ये क्राइम का, टेररिज्म का ये बहुत बड़ा एक जो है सो ये संदेश देना चाह रहे हैं ऐसे लोग, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
4: Let's turn our attention now to Assam, where the flood crisis remains far from over. Large parts of the state continue to be inundated, with thousands of families in the state still displaced and rescue teams racing against time to reach maroon villages. Even as flood waters begin to recede in some areas, the immediate challenge is shifting from evacuation to relief, rehabilitation and preventing a secondary health crisis too. Now against this backdrop, BJP's JP Nadda, accompanied by Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, visited the affected areas to review rescue and relief operations and interact with displaced families there too. For people on the ground, however, you must note the key question is no longer just about rescue. It's about how quickly essential services can be restored and whether relief reaches those who need it the most. Ratadeep Chaudhary has been tracking the situation on ground for us since day one. He sent us this crucial report. Take a look.
5: With the Met Department issuing alerts for more rains in Assam, Arunachal Pradesh and Meghalaya, there has been rains overnight. At this moment there is no rain, the sun is coming out, but we are at the Rukmini Gaon locality of Guwahati, where even an hour of rain, heavy rain, causes this kind of inundation. People have to face a lot of trouble. You can see here there is a lot of water and there is a lot of water logging which is taking place in Guwahati. So therefore at this moment when in the Upper Assam region, particularly in the worst hit Sivasagar district, the flood situation has improved. Although the death toll is going up, there is a joint review by the state and center of the flood situation in Upper Assam and neighboring Nagaland and Arunachal Pradesh as well. Union Health Minister JP Nadda is doing this review in for center, as well as Assam Chief Minister have been camping in Upper Assam. But what is important to know is that even in Guwahati, several pockets remain waterlogged after heavy showers. So that is another major issue. The urban flooding is another major issue which Assam government has to tackle, even as the flood situation in rest of the state, particularly in the worst hit districts of Sivasagar and Charaideo, is showing signs of improvement. In Guwahati, with campus Sanjay Chakravarti, Ratnadeep Chaudhary for NDTV.
4: All right, let's switch tracks now. The PS5 is now playing its own expensive game. Sony has hiked the price of the PS5 Standard Edition in India by 15,000 rupees. So Sony has increased the price of the standard PlayStation 5 in India, pushing it closer to the 70,000 rupee mark. For gamers, the next challenge may not be the boss fight, but the budget instead. Take a look at the details.
6: If you're into gaming, your PlayStation 5 got 15,000 rupees more expensive.

0: कष्ट कर रहे हैं अपने न्याय के लिए, मांग सीबीआई जांच के लिए, सरकार को जेपीएससी जैसे सभी मूलभूत सुविधा सुधार के लिए, यही आश्वासन लेकर के यहां से छात्रों को लेकर के निकले।
1: सो इवन एज द झारखंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट गैदर्स मोमेंटम, द मूवमेंट इज एंटरिंग अ न्यू फेज टुडे आफ्टर डेज ऑफ सत्याग्रह एंड एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। प्रोटेस्टर्स हैव नाउ टेकन आउट अ मैसिव तिरंगा यात्रा थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रांची, सेइंग दैट फाइट इज फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट्स यूथ एंड फॉर अ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम। My colleague Ankit Tyagi has been on ground zero, tracking the sentiment and the message the students are trying to send. Listen into the report he sent across.
2: Since 25th of July, the students in Ranchi have been protesting against the alleged examination paper leak of the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand State other services, examinations that were being, that the allegation is the paper was leaked. The OMR sheets have also been made public in many cases. Today, all these students are taking out a Tiranga march here, and it is raining. It has been raining continuously for the last few hours, and that has not deterred these students. At 4 o'clock, there was an initiation by the government. They said that they would want to, in fact, speak to these students, but the students say that there should be, that the conversation should be at a neutral place. The government should make that initiative, not at the Chief Minister's office, but at a neutral place where the students can come and speak. For them, there are many of these students, those who have been on hunger strike as well. And tomorrow is when the assembly session here in Jharkhand is going to begin. And while there is going to be political pressure as far as Hemant Soren, the Chief Minister, is concerned, the students say that they will continue their protest till the time not only are these papers, there is cancellation, but a CBI probe as well. So far, a CID probe is going on as far as these protests are concerned, and 11 people have been arrested. The Chief Minister, who is also the Education Minister, says that the government is willing to listen, but at this moment, it has only come today. How does it pan out in the days to come? That is going to be an important question. But come rain or anything else, these students are determined that they will continue their protest till the time. We are now, the protest march is, the Tiranga march is getting back to the stadium where this protest has been going on for the last few days. I will show you exactly how this situation inside is for you to get an understanding, because like with every other protest, of course, there are allegations that, this becomes political and so on and so forth. Thankfully, the government has not dismissed them by saying that it is a political protest. Now, this, as soon as you enter the stadium, what you see behind me here is where Mr. Mahato is sitting on a hunger strike. He has been on this hunger strike for the last 4 days. Today, he spoke to Sonam Wangchuk as well. And this is... the entire protest has now been divided into two of these tents. One at the entrance where Mr. Mahato of the Jharkhand Krantikari Morcha, he is the leader of that Morcha, and he's been sitting on protest for that. You will see the kind of melee that is happening, a lot of people coming in from that protest site as well. And they have arranged this food and other things for the protesters, those who have continuously been standing here. This is where half of the protest is. They used to be together, but when the students felt that there is a lot of political interference, entire stadium, which has been a Krantikari sort of a stadium for many, many years, is seeing a protest where on one hand is Mr. Mahato. Of course, he's his own political outfit fought an election. He's demanding for the same demands as the students have been. Bahut bahut shukriya. Thank you so much. Kya naam hai aapka?
3: Nityam Jha.
2: I was just walking and this gentleman just put his umbrella over my head. I just want to show you, this is the stage, the protest. This is where everything is being, in fact, more or less being controlled from. Shibu Soren, father of Hemant Soren, or you know, a legendary figure as far as politics of Jharkhand is concerned. And you would all see, you know, Bhagat Singh's picture there. You will see Birsa Munda. You will see Baba Saheb Ambedkar. You would also see B.R. Ambedkar. And there is Mahatma Gandhi as well. And that's where all these people say that they are drawing their strength. These are the students. Aap mein se kaun kaun abhi hunger strike par hai? Aap hain. Aap charo log hunger strike par hain. This is the demand. Yehi mudda hai, yehi demand hai.
3: जो JSSC और JPSC में जितने भी एग्जाम में धांधलियां हुई है ना, सभी एग्जाम में CBI और ED की जांच करने की मांग चल रही है।
2: आपको लग रहा है कि 25
3: छोटा मुद्दा है, इससे बड़ी बड़ी मुद्दा है वहाँ पे है। इतना अंदर तक धांधलियां हुई है ना कि कोई नहीं बता सकता है।
2: से आप बैठी हैं भूख हड़ताल?
3: हम भूख हड़ताल कल से बैठे हुए हैं, इससे पहले 12 दिन तक यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लड़की होकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। वो हमको मजबूर किया गया है आंदोलन पे बैठने के लिए।
2: Hemant Soren, the chief minister of the state, I mean, if you are watching by any chance this show, listen to her, because they believe that if Hemant Soren comes here, that at least shows that the government is sensitive to the demands of these protesters.
1: Meanwhile, 12 days into the JPSC protest and 2 days into the hunger strike, Jharkhand students confronted Health Minister Irfan Ansari in a dramatic live face-off on NDTV. The students rejected attempts to politicize their agitation, insisting that they are fighting only for a fair recruitment process, cancellation of the disputed JPSC results, and a CBI probe. They have questioned the government's delay in responding, highlighted alleged irregularities in recruitment, and also addressed the uncertainty surrounding their future. Listen in to that exchange.
4: कई डेवलपमेंट हुआ है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रभारी के राजू सर ने आज एक आपात बैठक बुलाकर युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन कराया गया है, जिसमें 4 मंत्री भी हैं। तो जो बच्चे वहां पर हैं उनसे हमारी टीम वार्ता करेगी, उनकी जो भी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये धरना में मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग जा रहे हैं, व्हाई दे विल गो, हु अलाउ हिम। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं, भाजपा जो है इनकी नीति और नियत में खोट है, युवाओं का आंदोलन को कुचलना चाहते हैं।
5: जो धरना है वो तो बच्चों का धरना है ना, उसको आप भाजपा का धरना क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड,
4: आज मैम
5: ये तो युवाओं का धरना है। पहले दिन से हम जब बात कर रहे हैं
4: भाजपा
5: तो मंच तो युवा संभाले हुए हैं, उसमें भाजपा का क्या लेना देना?
4: मेरी बात सुन लीजिए, कई भाजपा के लीडर आज वहां गए और हम लोग उसका रहे हैं।
5: एक सेकंड, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, चंडी कुछ बोल रहे हैं आपसे।
6: सर, हम बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिकारी भविष्य बनाने आए हैं। ये झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं जलता है, झारखंड में स्टूडेंट के भविष्य को भी जलाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है सर, हमारा एज जा रहा है, हमारा माता पिता परेशान है,
7: कोई नेशनल
6: कुछ कर पा रहे हैं सर, माता इस ऐसा सिस्टम
5: क्योंकि इसको अगर आप पार्टी में बांट देंगे। इरफान अंसारी जी, एक सेकंड, जस्ट कीप चंडी तिवारी एंड इरफान अंसारी ऑन स्क्रीन फॉर अ सेकंड। अगर आप इसको कह देंगे कि भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां धरना, भाजपा ओवरटेक कर रहा है, नहीं, पहले दिन से ही यहां पर जो बच्चे हैं, जो सीबीआई की डिमांड उठ रही है, जो सरकार से बात करने की डिमांड उठ रही है, वो तो आम बच्चे उठा रहे हैं। अगर वहां पर लोग आ जा रहे हैं, भाई आप भी जंतर मंतर पर आ जा रहे थे ना, आपके नेता भी जा रहे थे, सपा के नेता भी जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा कि उनकी जो डिमांड थी वो नाजायज हो जाती है। इरफान साहब, जब आप उसको बेवजह का नाटक बोलते हैं, तब तो फिर आप उसको एक राजनीतिक प्रिज्म से देख रहे हैं।
4: मैम, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये दिल्ली का धरना है नहीं, दिल्ली में नीट का जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये लाखों लाख बच्चे प्रभावित हुए, भाजपा ने उन पर गोलियां चलाई, बच्चों को मारा, आपने देखा होगा वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। ठीक, अगर आप कंपेयर करें झारखंड की JPSC की, तो मैम यहाँ पर 300 सीट है, मात्र 300 प्लस सीट है, इसको लेकर छात्र धरना पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ। टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आज JPSC के चेयरमैन को बता दिया गया है, कई लोग हिरासत में है, जांच चल रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार, आज बैठक में हमने अपनी बात को रखा, सीएम साहब भी थे, हमारे प्रभारी के राजू सर भी थे, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो लोग, आज बरसात में देखिए वो लोग भींग रहे हैं, उनकी जो भी मांग है हम लोग को जानना चाहिए, सुनना चाहिए।
7: हम लोग बरसात में भीग रहे हैं सर, अभी जी खड़े हो, हम ये कहना चाहते हैं सर, छाता लेके ये देखिए हम लोग छत पे हैं,
6: आप नहीं आ रहे सर, आप क्यों नहीं आ रहे हैं,
7: आप एक बार आकर तो बात कर सकते हैं
6: ना, रांची में कितना दूर है सर, आप जाते हैं आ जाइए हमारे पास,
7: हम लोग को तकलीफ तो सुनने को मिलती है।
1: Meanwhile, Congress leader Rahul Gandhi has thrown his weight behind the NEET aspirants, alleging that they were assaulted, they were threatened and silenced for demanding accountability over examination irregularities. Rahul Gandhi praised the students as they stood behind him for speaking out and renewed his attack on what he described as a broken examination system. The BJP, though, has hit back sharply, with party spokesperson Sambit Patra rejecting Rahul Gandhi's allegations, insisting that no shots were fired during the protest. That's what BJP Sambit Patra has said, that no shots were fired during the protest. He's accused the Congress leader of playing politics with children instead. The BJP has also questioned Rahul Gandhi's silence on the ongoing recruitment protests in Jharkhand. So the political war over the students' protest has now turned into a face-off between Rahul Gandhi and the BJP Sambit Patra too. Rahul Gandhi is flagging concerns over education and youth issues. Sambit Patra, though, is accusing him of selective outrage while questioning why he hasn't visited Jharkhand yet. Listen in to that face-off.
8: The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for his for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened.
9: Magar Jharkhand ke bachche bhi bachche hi hain, wo bhi andolan kar rahe hain. Jharkhand ke kuch bachchon se bhi Rahul Gandhi ka interaction hona chahiye. Unke bhi takleef aur dukh ko samajhna chahiye. Rahul ji ka jo vaktavya tha कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे?
10: राहुल गांधी हेट्स द यूथ ऑफ इंडिया, राहुल गांधी हेट्स द जेंसी ऑफ भारत, दिस इज व्हाई इज क्रिमिनली साइलेंट ऑन झारखंड, द कांग्रेस जेएमएम गवर्नमेंट is present in Jharkhand, it is governing in Jharkhand, but despite that neither the Chief Minister nor Rahul Gandhi has uttered a word or met the students. Is it because these students come from poor background? Is it because these students are sons and daughters of farmers and laborers and those belonging to the poor community that Rahul Gandhi and the Congress party will not heed to their demands? This also proves that Rahul Gandhi and the Congress party are extremely hypocritical when it comes to the students' demand. You have your government in Jharkhand. Why has there no CBI probe not been ordered? Why the examination has not been cancelled? This tells you that the Gen Z of Bharat, those who do not have any political lineage, are being ignored by the Congress government.
1: All right, let's turn our attention to the latest information coming in this morning. Amid continuing speculation over whether actor Dhanush could eventually enter politics, one of his latest public remarks is now drawing attention. He was speaking about language, and Dhanush actually expressed concern over what he sees as a growing disconnect from Tamil among young people. He has said many are fluent in English but struggle with their mother tongue, adding that not knowing Tamil is not a matter of pride but an insult. Listen in to what Dhanush has said regarding the matter.
11: English தப்பு தப்பா இங்கிலீஷ் பேசுவோம், வைடிடி வெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் தான் பேசிட்டு இருந்தேன் நல்லா. ஆனா தமிழ் நல்லா வரும், இப்ப அப்படியே மாறி போச்சு. நான் வெளில மீட் பண்றேன், 10-8 பேருக்கு தமிழ் எழுத படிக்கவே தெரியல. இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, இங்கிலீஷ் எழுதுறாங்க, படிக்கிறாங்க, ஆனா தமிழ் எழுத தெரியல, படிக்க தெரியல. ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அது. நான் ஒரு பிரெஞ்சு ப்ரொடக்ஷன்ல ஒரு படம் பண்ணேன், பெல்ஜியம்ல ஷூட்டிங். அங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா நம்ம கேட்கும்போது, நான் தெரியும் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந்தது. இப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா? ஏன்னா பொதுவாக இங்கிலீஷ் ஒருத்தனுக்கு தெரியலன்னா தான் கிட்டல் பண்ணுவாங்க. தெரியுதுன்னு அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஏன் நீங்க ஆச்சரியப்படுறீங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை உங்களுக்கு உங்க மதர் டங் தானே தெரியணும், பட் இங்கிலீஷ் ஒரு போனஸ் தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிதான் அவங்கலாம் பாக்குறாங்க. உங்களுடைய தாய்மொழி தான் உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும், உங்களுடைய தாய்மொழியை நீங்க முதல்ல எழுத படிக்க தெரிஞ்சுக்கணும்.

है। और ये रिपोर्ट ऑलरेडी पहले 1 साल पहले जो SIT बनाई गई थी उसने पेश कर दी थी, लेकिन अब विधानसभा में के पटल पे 1 साल बाद में सरकार को

0: चाहिए जिन लोगों ने हमारी 5 लोगों की जान ले ली उस और मजबूरन निर्दोष 100 लोग से ज्यादा लोगों को जेल में रहना पड़ा।
1: सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा, इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं न जाने और कितने मारे जाते।
2: उसमें जो प्रमुख नाम आए हैं वो है जियाउर रहमान बर्क मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुहैल इकबाल पुत्र एमएलए इकबाल महमूद, एडवोकेट अफजल अली मसूद अली फारूकी जो कि इस शाही मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में थे। ये पूरी तैयारी से आए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और इनकी जो भी मांगे थी वो पूरी तरीके से असंवैधानिक थी।
3: जो बातें सामने आई हैं जांच के बाद ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं समझता हूं कि सरकार करेगी ही, करनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देशद्रोह का काम है, ये समाज में अराजकता फैलाना और समाज को विभिन्न भागों में बांटना और यहाँ अशांति अराजकता फैलाना, ये क्राइम का टेररिज्म का ये बहुत बड़ा एक जो है सो ये संदेश देना चाह रहे हैं ऐसे लोग, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
4: देखिए अभी कौन कह रहा है क्या है इसका पूरा विवरण मेरे पास में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी साजिश अवश्य थी। पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट जब किया था तो उसी समय चारों तरफ इसकी खबरें आई थी, तमाम बयान आए थे लोगों के और तमाम लोग पकड़े भी गए थे संदिग्ध अवस्था में कि बड़े पैमाने पर लोग दंगा में शामिल हो रहे थे और दंगा कराना चाहते थे। तो कौन किस में शामिल था ये तो जांच के बाद पता चलेगा।
5: Well, in other crucial developments, the standoff between the government and Meta is entering another crucial round today. A day after Meta's global affairs chief, Joel Kaplan, met senior government officials, the company and the Ministry of Electronics and Information Tech, they are set to hold another round of discussions, with the focus extending well beyond the brief removal of Prime Minister Modi's Facebook video. Meta has confirmed that Joel Kaplan personally apologized to the minister over the restriction placed on the Prime Minister's post on Facebook. Sources say that Mark Zuckerberg has conveyed his regret over issues relating to child sexual abuse material, deepfake content and other operational lapses, but has not personally apologized. Meta reportedly admitted that a lot of money was paid for boosting certain types of content on its platforms and apologized by expressing regret for their mistake. The government has, meanwhile, they have raised concerns over content moderation, arbitrary takedowns and compliance with Indian law. Meta maintains that the lapses were not deliberate and they've assured the government that they are strengthening their systems to prevent similar incidents.
6: देखिए ये मेटा का बहुत बड़ा मतलब ये झूठ बोलेंगे और उनको माफी तो जरूर मांगनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार के लिए निर्वाचित हुए हैं 140 करोड़ भारतीय का जो पहला मतलब सही से देश के प्रधानमंत्री के नाते अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर युवाओं को अपील करते हैं और युवाओं को देश के पुनर्गठन प्रक्रिया में उनका जो योगदान है महत्वपूर्ण उसका जो योगदान है उसके बारे में अपील करते हैं, उस अपील को ठुकराना उस अपील को हटा देना ये बहुत बड़ा एक अपराध बोलेंगे हम।
7: आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स दैट आर बहमत लाइक Meta has apologized to the demands of a political demand from certain people here. I don't believe that. But Meta is obviously obliged to follow international protocols as far as trafficking and the sexually exploited material is concerned. But I think the biggest grouse here for the government is that their propaganda is now not as visible to Gen Z, because Gen Z is now calling out their bluff and putting out memes and putting out their critique of the government.
5: Meanwhile, a major showdown is unfolding between New Delhi and Silicon Valley. India's Parliamentary IT Committee has just issued a bruising 7

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
6: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा घर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
7: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
6: आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: 3 साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
8: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा,
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
7: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा।
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है?
8: और
7: बच्चे हैं?
8: 3 साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत।
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: सिनेमा तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्थर मसाला।
7: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
8: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
7: आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा।
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
8: 3 साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत।
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: श्रीनगर तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
9: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आतेर मसाला।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
7: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the network of impact.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air tank.

0: वो हम एक साल का या दो साल का प्लान लेकर के नहीं चलते। हमने 2047 तक भारत को हम विकसित भारत कैसे बनाए, ये प्लान है।
1: वो लॉ कमीशन
0: कितने एडवोकेट्स हमें आगे आने वाले समय में मिलने चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस संबंध में काम करती है। थैंक यू।
2: एंड नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। सप्लीमेंट्री प्लीज।
3: शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि जब तक न्यायिक संरचना और संस्थानों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक न्याय का भी चरित्र नहीं बदलेगा। क्या सरकार अपनी तरफ से एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन कुछ कोशिश कर रही है? ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन की कोशिश कर रही है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अगर कैरेक्टर नहीं होगा न्यायिक संस्थाओं का तो न्याय भी हर घर हर घर नहीं पहुंचे दर नहीं पहुंचेगा। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता
2: हूं।
0: धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं उससे संबंधित ही है। सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है और ये जुडिशरी में भी है। जैसे ये एमओपी की बात करते हैं, कई बार हमारे यहाँ जब कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का विषय आया एमओपी। उस एमओपी में ये प्रावधान भी है और हम लगातार जो संबंधित हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं 25 हमारे हाईकोर्ट्स हैं उनको लगातार मेरी ओर से भी लेटर जाता है कि जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जो कैपेबल एडवोकेट हैं उनमें कुछ नाम अगर आपको ठीक लगता है तो उनके नाम भेजे जाए, ऐसे लेटर भी हम भेजते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये हमारी प्रायोरिटी।
2: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। फॉर दिस ओनली ही वाज टेलिंग समथिंग अबाउट यू। यू सी गार्गे जी यू लुक इन टू योर मेंबर ही शाउटिंग अननेसेसरीली।
4: सर
2: या यू स्पीक यू पुट योर क्वेश्चन। सर
4: आई एम आस्किंग द लॉ मिनिस्टर Honorable Law Minister, that is there a plan to review the thing collegium system which is working? Is there a government proposal to review that or work on that?
2: Okay, Honorable Minister.
0: Sir, मैंने कल भी जो Supreme Court के judges बढ़ाने के संबंधित बिल था उस संबंध में एक विषय रखा था। मैं इस संबंध में रिइटरेट करना चाहता हूँ, पुनः बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य को जो उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है कि हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच एक कंटिन्यूअस इंटेग्रेटेड एंड कोलोबरेटिव प्रक्रिया है जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से परामर्श व अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 तथा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 217(4) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 1993 के सेकंड जज केस 1998 के थर्ड जज केस के तहत प्रिपेयर किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत की जाती है। थैंक यू।
2: नाउ फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रेखा शर्मा जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। सर मैं आपके थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत काम है क्योंकि दो स्टेट्स का काम वहां पर है, तो क्या सरकार सोच रही है या मिनिस्ट्री सोच रही है कि वहां एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल ऑफिसर्स और एक्स्ट्रा कोर्ट रूम्स को बनाया जाए ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है जस्टिस सिस्टम है उसको हम

0: Hasn't been, you know, any initiation about the timing of these talks, but today everybody is hopeful that there is going to be some sort of a way forward today.
1: If you've been speaking to the students on the ground, the protesters there, BJP questioning Rahul Gandhi's silence, how are the students responding to that charge by the BJP?
0: You know, let me try and put this, if I can, to few of the students, those who are coming in here. Kahan se aaye ho? Kya naam hai aap?
2: My name is Sudhanshu Kumar, sir.
0: Kahan se aaye ho, Sudhanshu?
2: Main to yahi rehta hu, sir. Main Simdega ka hu.
0: To Simdega se aap yahan padhne aaye ho, Ranchi mein? Ranchi mein padhte ho, kya karte ho?
2: Ji, mera graduation Allahabad University se hua hai aur main Ranchi mein rehkar apne aage ki padhai kar raha hu, sir.
0: To ye bataiye ki ye aaj kya aapko lag raha hai ki koi resolution nikal jayega, sarkar sunne ki mood mein hai?
2: Dekhiye, aaj ye protest ka lagbhag 12va 13va din hai. Main shuru din se प्रोटेस्ट में जुड़ा हूं। कल यहां पर लोकल एसडीओ आए हुए थे सरकार का मैसेज लेकर कि सरकार आपसे वार्ता करना चाहती है, लेकिन शायद स्टूडेंट्स ने कुछ कहा कि हमारी भी कुछ डिमांड्स है कि ये ओपन ऑन मीडिया के सामने ये सारा चीज़ होना चाहिए। अब आगे ये कार्रवाई देखनी चाहिए कि सरकार हमारी बातों को मानती है या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा।
0: आपको लगता है कि जब ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था तो राहुल गांधी अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी काफ़ी एग्रेसिव थी इस प्रोटेस्ट को लेकर, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है? राहुल गांधी को भी यहाँ पर आना चाहिए था आपके सपोर्ट के लिए?
2: जी बिल्कुल आना चाहिए था। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कल यहाँ पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, साथ में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, कुमार राजा सर। तो राहुल गांधी जी का ही मैसेज लेकर यहाँ पर आए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर फिजिकली सशरीर यहाँ पर उपस्थित होते तो शायद यहाँ पर जो आंदोलन है वो और भी उग्र होता,
0: क्योंकि वो पार्टनर है सरकार में। आपको लगता है अगर वो इस पर कुछ कहेंगे तो जल्दी आपकी बात सुनी जाएगी?
2: जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर चूंकि कांग्रेस भी सत्तारूढ़ दल का एक बहुत ही पार्टिसिपेंट है, अगर यहाँ पर राहुल गांधी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा सोल्यूशन निकलेगा।
0: यू नो, दैट्स द सेंस, देयर इज अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दैट सिंस राहुल गांधी हैज बीन इन फैक्ट स्पीकिंग अबाउट रूथ एंड द पेपर लीक एंड द नीट इश्यू, ही शुड बी स्पीकिंग हियर एज वेल, एंड आई स्पोक टू मेनी ऑफ देम, दे ऑल्सो हैव दैट सेंटिमेंट। दो द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स हैव बीन कमिंग हियर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड अदर्स, बट दे फील दैट नॉट इनफ प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम विद इन, एंड दैट विल ओनली हैपन वंस द टॉप लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी स्टार्ट स्पीकिंग पब्लिकली अबाउट दिस इश्यू।
1: Ankit, you're saying one of the sticking points, if you can hear me, is the demand for a CBI probe. Is another sticking point then the demand by the protesters to have this out in the public, the conversations, to be transparent with the conversations, not to have this behind closed doors, the discussions with the government representatives?
0: You know, yesterday there was a lot of resonance as far as that demand is concerned. They wanted the leaders, they wanted you know, the government's team to come and sit here, or at least go to a neutral venue in a hall where there is the presence of the media and they can in fact put their word forward. I think late night when I was speaking to the delegation and the students, those who have been leading this protest, I think that is something they are okay to let go at this moment. They are willing to go and speak to the government at a neutral venue, whether in front of the media or otherwise, but they want to go with a charter of their demands, and that charter would be important for the government to in fact not only take cognizance of, but actually go ahead and in fact announce that with the protesters.
1: All right, Ankit Tyagi, I'll come back to you at the top of one as well on this big story where you've been speaking to the students, understanding what their demands are and what the latest is on the ground when it comes to the upcoming talks, hopefully, between the government representatives and the representatives from the protesters on the ground there. Thank you for joining me here on Breaking Ground. All right, and news just coming in from Uttar Pradesh. The youngest son of slain gangster politician Atiq Ahmed has died in a road accident in Jhansi. That's the latest that we're picking up. A car collided with a road divider in Jhansi in UP, resulting in 2 deaths and 3 injuries. One of the individuals involved in this incident is Aban Ahmed, the youngest and 5th son of mafia figure Atiq Ahmed. His death has now been confirmed. This is the latest that we have for you. This is a major development coming in from Uttar Pradesh, where Atiq Ahmed's son, Aban Ahmed, the youngest son of slain gangster politician Atiq Ahmed, has died in a road accident in Jhansi. According to the police, a car crashed into a road divider in the Khilli area under the Pooch police station limits. The accident claimed 2 lives and left 3 people injured. I have with me on the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: बरसों से सरसों।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control.
5: Welcome back. It was a big night for NDTV at the 12th BCS Ratna Awards in the national capital. NDTV has won 7 honours across television, digital, election and on-ground coverage, podcasts and individual excellence.
6: English News Channel of the Year 25-26, ladies and gentlemen, please put your hands together for Without a Doubt, Team NDTV 24/7.
7: NDTV has added another feather to its cap, emerging as a big winner at the 12th BCS Ratna Awards in New Delhi. The recognition cuts across the entire spectrum of news, from television and digital to election reporting, podcasts and online journalism, underlining NDTV's strength across platforms. NDTV 24/7 was named Best English News Channel of the Year 2025-26, while the NDTV app was recognized as the Best News App of the Year.
8: बीते 12 महीनों में हमने खूब मेहनत की है, शिद्दत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और ये कोशिश की है कि NDTV को एक बार फिर से खड़ा किया जाए. आपने जिस तरीके से देखा, मेरे कई सारे साथी शिव, वसुधा, तारिणी और कई सारे और शायद और भी अवार्ड मिलने वाले, वो आए, उन्होंने अवार्ड जीते. हमारी ये गारंटी है कि आने वाले 12 महीने में भी हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा लगन से प्रयास करेंगे और BCS के जितने भी अवार्ड हैं उनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं.
7: द नेटवर्क्स कमिटमेंट टू जर्नलिज्म ऑन द ग्राउंड ऑल्सो अर्न टॉप ऑनर्स. इट्स वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवरेज वॉज नेम्ड बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर, वाइल इट्स कवरेज ऑन ऑपरेशन सिंदूर वन बेस्ट ऑन ग्राउंड कवरेज ऑफ द ईयर.
9: इट्स नेवर एन इंडिविजुअल अवार्ड. माय रिपोर्टिंग वाज बिकॉज़ ऑफ अ ह्यूज टीम. Never comes on camera, so this is for all of them, not just for me. Thank you very much.
7: The awards also recognized NDTV's expanding digital and editorial footprint. Control All Defense, NDTV's defense podcast, was named Best Podcast Show of the Year, adding another win to the network's growing presence beyond television. And the recognition was not limited to platforms and programs. It extended to journalists and anchors who bring the news to audiences every day. Syed Sohail was named Best Primetime Anchor of the Year, while Vasudha Venugopal won Best Female Anchor of the Year.
10: As journalists, we've always been taught that facts are sacred, but opinions might vary, might be different. I'm glad I work in a place that that has objectivity and rigor as central to its work, and I would like to thank my CEO Rahul Kamal for this, because as a journalist, objectivity is very important for me, and NDTV is striving to ensure that we tell the story in the most objective way as possible and also bring all the voices that deserve to be heard.
7: From the newsroom to the field, from television to digital, the honors reflect the breadth of NDTV's journalism, innovation and leadership. Bureau Report, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आर्टियर मसाला।
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26.

0: they made, that itself couldn't feature in the manifesto, clearly shows that this government is not in the right direction.
1: All right, thank you for joining me on the phone line there. We've heard from the DMK as well as the AIADMK, both claiming that these were originally their programs that have just got a facelift and have been presented in the assembly. We'll wait and see what the TVK has to say and how they respond. Politics has erupted in West Bengal after the state government launched a drive to enforce noise pollution norms at religious places. Acting on the directions of the West Bengal Pollution Control Board, the police have begun implementing strict rules on the use of loudspeakers, with a particular focus on rooftop loudspeakers installed at mosques. Authorities have held meetings with mosque committees across several districts, asking them to remove rooftop loudspeakers and shift to low-volume sound systems. Meanwhile, the Trinamool Congress has alleged that the action is being carried out in a biased manner against one community and has demanded that noise pollution rules be enforced equally across all religions.
2: देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक खिलाफ एक तरफा काम कर रहा है, एक रिलीजियस के खिलाफ है। मस्जिद में आजान होता है, मंदिर में घंटा बजता नहीं। पॉल्यूशन होता है तो सब रिलीजियस के लिए होते होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम के लिए खिलाफ है। हम लोग शुभेंदु अधिक के पास जाएंगे, इसका डिमांड भी करेंगे जे ये होना नहीं चाहिए।
3: যারা ধর্মকে যুক্ত করবে দেখার চেষ্টা করছেন তারা তাদের মতো দেখবেন, আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু শব্দ দূষণগুলো তো একটা শব্দ আছে, সরকারের তো নিয়ম শৃঙ্খলা কিছু আছে। যে যার ধর্ম নিজের বাড়ির মধ্যে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। মসজিদে যান, নামাজ পড়ুন, মন্দিরে যান, মন্ত্র পড়ুন, বারবার মাইক লাগানোর প্রয়োজন কি আছে?
4: আমি জানি না কে করাচ্ছে কেন করছে, সরকারের নির্দেশিকা সেটা সবাইকে মানতে হবে। যদি কেউ জোর করে খোলায় সেটা কথা বলা উচিত ঠিক নয়। আর সব জায়গায় মাইক লাগানোর অনুমতিও নাই, মন্দিরে মসজিদে সব জায়গায় মাইক লাগাতে হবে, কে বলেছে? যখন এই ধর্মের কাজ শুরু হয়েছে, ভগবান এসছেন, প্রফেটরা এসেছে, তখন থোড়াই না মাইক ছিল। তো সেই জন্য অন্যের ডিস্টার্ব না হয় সে জন্য সাউন্ড কন্ট্রোলে থাকা উচিত, এটা সরকার বলেছে, সেটাই সবার মানা উচিত।
5: मेरे पास बहुत जेले से फोन आया, क्या बोला कि पुलिस ने उनको बुलाया, मस्जिद कमेटी को बुलाया, बुला के माइक्रोफोन को हटा दो, लाउड स्पीकर को हटा दो। तो उन लोग जब पूछा पुलिस को कि क्या ऑर्डर किया है, नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के बेसिस से हम लोग को बोल रहे, कोई नहीं देखा पाया। बोला कि हम लोग बोला तो हो गया, लेकिन हमारा बात ऐसे यही है, अगर उतरना है तो रिटर्न पूरे कोई आपका ऑर्डर देना होगा। दूसरा बात आए तो पुलिस आके उतार दो।
1: Meta and the government of India all set for round two of talks today. This comes just a day after Meta's global affairs head was summoned by the Ministry of Electronics and Information Technology over various issues concerning the platform in India, including the Prime Minister Narendra Modi's video that was taken down. Confirming the developments, Meta also confirmed to NDTV that Joel Kaplan in person apologized to the minister over the restriction on Prime Minister Modi's post. Meta chief Mark Zuckerberg also reportedly sent his apologies for the CSAM content, deepfake content and other errors in operating the platform. Meta reportedly admitted that a lot of money was paid for boosting certain types of content on its platforms and apologized by expressing regret for their mistake. Meanwhile, the government asked Meta to comply with Indian laws and flag concerns over arbitrary takedowns. However, Meta assured that the misuse was neither deliberate nor knowingly allowed.
6: Meta has now apologized. We saw that statement coming in yesterday. How do you see that?
7: See, no foreign social media platform or any agency should take India for the granted. But the same government has been misusing their influence and restricting our social media reach and this thing. So they're getting the medicine of the same.
8: देखिए ये मेटा का बहुत बड़ा मतलब ये झूठ बोलेंगे और उनको माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार के लिए निर्वाचित हुए हैं, 140 करोड़ भारतीय का जो पहला मतलब चॉइस है देश के प्रधानमंत्री के नाते, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर युवाओं को अपील करते हैं और युवाओं को देश के पुनर्गठन प्रक्रिया में उनका जो योगदान है, महत्वपूर्ण उसका जो योगदान है, उसके बारे में अपील करते हैं, उस अपील को ठुकराना, उस अपील को हटा देना, ये बहुत बड़ा एक अपराध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: POK ke firing range mein khade hain.
15: Just few inches away. Is POK.
14: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े। Is it fire?
16: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
17: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
18: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
19: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
20: हरियाणा।
19: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
20: डेढ़ महीने पे।
19: आपकी फैमिली है?
20: और
19: बच्चे हैं?
20: 3 साल।
19: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
20: बहुत।
19: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
20: सिनेमा घर तक अलाउड।
19: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
18: See, the sacrifice is unbelievable, you know.
21: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
22: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
21: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
23: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
24: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program.
13: Let's get it.
11: Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
15: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
16: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
17: हरियाणा।
16: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
17: डेढ़ महीने पे।
16: आपकी फैमिली है?
17: और
16: बच्चे हैं?
17: 3 साल।
16: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
17: बहुत।
16: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
17: सिनेमा घर तक अलाउड।
16: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
15: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
9: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है?
10: कौन?
9: बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: सिनेमा तक अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
8: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
13: Really?
12: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: Launch control, 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
16: This car makes no sense, yet it makes every sense.
17: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
18: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
19: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
20: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
9: Just few inches.
21: Hello and a very good afternoon, viewers. You're watching NDTV as always, and I am Aditya Raj Kaul. It's a big day for justice against rape, against sexual assault. Tarun Tejpal has been convicted after 13 long years of the legal battle. We'll get you more details on that through the bulletin, but first the top headlines at this hour. Former Tehelka editor Tarun Tejpal has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in the 2013 Goa rape case. The Bombay High Court had overturned his acquittal and Tejpal is set to challenge the verdict in the Supreme Court. Pressure mounts over Soraen government over students' protest. Protesting students demand direct talks with Soraen. Soraen open to talks, students want it on camera. Tamil Nadu leader of opposition Udayanidhi slams Chief Minister Vijay, says he hasn't fulfilled even a single promise made to the people of Tamil Nadu. Amid growing buzz over possible political entry, actor Dhanush reignites language war in Tamil Nadu, stressing that one's mother tongue should come before everything else. He said, not knowing Tamil is an insult, urged people to learn Tamil as well. Assam remains in the grip of the devastating flood crisis, with the death toll climbing now to 95. Vast areas stay inundated, leaving thousands struggling for survival. Relief and rescue efforts continue. And NDTV celebrates big night at the 12th BCS Ratna Awards, with multiple honours including the Best English News Channel, the Best News App of the Year and the Top Individual Awards.

0: And big development coming at this hour. Tarun Tejpal has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment and 5 lakh that he will have to pay. This is a big news for justice against rape and sexual assault that is coming in. And even as we speak about this and get the latest reactions from Tarun Tejpal and the families of the survivor, exclusively joining us here on NDTV is Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa. Mr. Sawant, thank you very much for joining us here on NDTV. Your first reaction, I remember as a reporter in 2013 covering this case, and it has taken 13 years. It is Goa police and the prosecution that the family is thanking for their relentless pursuit in this case. Your first reaction, please.
1: ये तो न्याय की जीत है. सबसे पहले मैं मेरे director of prosecutions और the police force इनको congratulate करूँगा. They are continuously follow up this case. And we are, they got, मैंने उनको न्याय मिला, इसलिए मैं वो कहूंगा कि न्याय की जीत है. मैं वो युवती का साहस और दृढ़ता, इसको भी नमन करता हूँ. कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 13 इयर्स वो हिम्मत से डटी रही और आज उस युवती को न्याय मिला. सही में ये अपराध तो हमारे गोवा की धरती पे हुआ था, इसलिए ये गोवा सरकार का यानी हमारी डेफिनेटली हमारी ये रही कि गोवा पुलिस और डीओपी उसको न्याय दे. इसीलिए हमने यानी नीचे की कोर्ट में उसको राहत मिली थी, फिर भी वी हैव चैलेंज दिस केस इन द हाई कोर्ट. और आज टुडे द हाई कोर्ट हैज गिवन द कन्विक्शन फॉर द तरुण तेजपाल. दिस रियली द विक्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो एंड विक्ट्री ऑफ इन दिस

0: नहीं बिल्कुल सावन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जो माता जी हैं सर्वाइवर की, उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली कि मैं गोवा सरकार और गोवा पुलिस की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पिछले 13 सालों से इस केस को जो है पूरी तरीके से लड़ा। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि तरुण तेजपाल ने हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत की, वो तहलका के संपादक रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल अटैक है, उनको किताब नहीं लिखने दिया जा रहा और कह रहे हैं उमर खालिद और शारजील इमाम का नाम ले रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल अटैक की कॉन्स्पिरेसी तरुण तेजपाल अब पहली बार बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बस मैं इस पे एक ही कहूंगा कि गोवा सरकार हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान करते आई है, महिलाओं के सुरक्षा इनके साथ पूरी तरह से खड़ी रही है। इस हमारे बहन के साथ भी हमारी गोवा पुलिस और प्रोसिक्यूशन उसके साथ खड़ी रही, इसीलिए तो 13 साल हम कंटिन्यूअसली इस केस का फॉलोअप करते रहे, नीचे वाले कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अभी किसको इसके ऊपर कुछ कहना है, इसके ऊपर देयर इज नो कमेंट फ्रॉम माय साइड। बस हम उस युवती को न्याय दिला सके, यही हमारी उस जीत है। मैं कहूंगा कि ये तो एक्चुअल न्याय की जीत है।
0: जी सावंत साहब, अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि अब जो तरुण तेजपाल है और उनका जो एक लीगल पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो ये वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, गोवा पुलिस गोवा सरकार पूरी मुस्तैदी से लीगल अक्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज इसको करेगी और साथ में जो है अगर तरुण तेजपाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसका मुकाबला करेगी?
1: विल स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। यस
0: जी। एंड एनी मैसेज दैट यू माइट हैव फॉर द सर्वाइवर इन दिस केस, फाइनली एक कोई टिप्पणी अगर आप परिवार के साथ कुछ आप कहना चाहते हैं?
1: हमेशा के लिए हम उस युवती के साथ थे और गोवा सरकार हमेशा के लिए महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के साथ में खड़ी रहेगी।
0: जी प्रमोद सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के साथ बात करने के लिए। दैट वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जॉइनिंग अस एक्सक्लूसिवली हियर ऑन एनडीटीवी ऑन द फोन लाइन, गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज फर्स्ट रिएक्शन टू द कन्विक्शन ऑफ तरुण तेजपाल, द फाउंडर एंड द फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ तहलका मैगजीन, कन्विक्टेड फॉर रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ यंग जर्नलिस्ट कुलीग हु वाज आल्सो वर्किंग इन 2013 इन द तहलका मैगजीन। नाउ इवन एज द रेप कॉन्विक्ट तरुण तेजपाल फर्स्ट रिएक्शन हैज ऑल्सो कम इन, हीज सेड इन फैक्ट he said that I am being framed on this Tarun Tejpal case. But before you get to hear that reaction from Tarun Tejpal, we have Sujata Dwivedi also joining us live on this big case. Sujata, what are the details that you are picking up? We know for sure that 10 years of rigorous imprisonment has been slapped against Tarun Tejpal, including a 5 lakh fine. But what are the other legal details or the observations that the court has spelled out in the final order? And what is the legal strategy of Tarun Tejpal ahead?
2: Well, to begin with, Tarun Tejpal is now going to approach the Supreme Court, the Apex Court, to get a stay on his conviction that has been given by the Bombay High Court today. But of course, there are several of these important sections that have been mentioned, and also the fine and the imprisonment tenure has been given as per that. To begin with, Section 354 and Section 357 that has been levied upon him, in which a person in authority has went on to not only exploit a worker, but also that of sexual assault that has happened with that junior female employee in that very elevator back then in November 2013. Now we know that back then in 2021, when the entire incident took the Mapusa court, when it went on to give bail to the accused here, who's Tarun Tejpal, it stated that there was no enough and sufficient evidence, and also that the victim's appearance and the conduct was not really that of a victim. And these weird remarks by the court actually led to the Goa government take cognizance and go and approach the Bombay High Court. And the Goa government here was also sure that if bail is given, or say that his acquittal here in the case is stayed, then they will also approach the Apex Court further. But of course, Tarun Tejpal in his ordeal to the court stated that he's 62 years old, he's got a family, and that he had already apologized for the conduct that he did. But an email cannot just work

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सरसों
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
10: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
11: हरियाणा।
10: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
11: डेढ़ महीने पे।
10: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
11: 3 साल।
10: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
11: बहुत।
10: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
11: श्रीनगर तक अलाउड।
10: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
9: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
3: Really?
2: Fashion that made you gag.

0: मैंने बनाया एक
1: वैक्सीन तो आपके साथ खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: Slipping into a very short break. Come right back. Coming up next is Prime 5 with me, Raisha Singh. Sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in the 2013 Goa rape case, the Bombay High Court had overturned his acquittal and they...
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
1: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: तीन साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा घर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind me
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा।

0: एक्सक्यूज मी गाइस ट्वाइस बट 10 टाइम्स ओवर।
1: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका की जो पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
4: I am Srinagar.
6: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
10: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज।
9: आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है?
10: और
9: बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: श्रीनगर तक अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: From the newsroom to the studio. To the thick of political action.
11: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
3: When stories have impact.
12: Padmatar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
3: The news has influence. The buck stops here with Padmatar Joshi.
11: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
3: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea.
13: Since 25th of July, the students in Ranchi have been protesting against the alleged examination paper leak. ग्राउंड वेयर द प्रोटेस्ट हैव बीन टेकिंग प्लेस।
14: अगर पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो, एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा।
15: पीजी करके पोस्ट ग्रेजुएट करके बीएड करके 8000 में नौकरी रखेगा कीजिएगा आप।
13: Hello, good evening and welcome to Nationwide at 6, coming to you live from Ranchi on NDTV. I am Ankit Tyagi and as always, our promise is where the news is, that's where we are. This is once again the Jaipal Singh Stadium and this is the epicenter of the student anger that we are witnessing here in Jharkhand. Before I go on and get you the real voices, the anger and the frustration on the 13th day of this protest which is going on, I want to show you something which these two boys and this lady and this gentleman is holding here. Langar ho ya biryani, hausla baato chhatra nahi. This is a direct message to a lot of people, especially on social media, those who are trying to in fact give some color as far as this protest is concerned. They are trying to in fact draw comparisons, a direct message that it is about come here, inspire, motivate, help people, बट डोंट डिवाइड द स्टूडेंट्स. ये क्यों लेके खड़े हुआ?
14: क्योंकि जैसे कि जाने आप देख रहे, कुछ कुछ लोग इंस्टाग्राम में जो रील बनाते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को, वो लोग उन लोगों ने यहाँ पर आके बोले कि ये आपको पता है क्या बोले, नहीं बोले, स्टेटमेंट मालूम है, पूरा वायरल है. तो इन लोग का बस हम लोग एक अटैच कर रहे हैं कि हम लोग अगर आपको कुछ करना है तो आप हौसला बढ़ाइए, छात्रों को मत बांटिए, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के सबको यहाँ प्रकृति और कला से प्रेम करते हैं. तो बस छात्रों को एकजुट बनाइए और ये इससे फालतू फालतू मतलब नेट मत फैलाइए,
13: फालतू बातें मत कीजिए. मैम आपका क्या नाम है, आप क्यों लेकर आए हो इसको?
11: सोशल मीडिया पे जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमें जुनैद की जरूरत नहीं है. जैसे जुनैद ने बिरयानी बांटी थी वैसे यहाँ पे मंदिर से लंगर आ रहा है. तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आपस में डिसाइड नहीं कर रहे, आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि आप कौन से रिलीजन से आ रहे हो, आप कौन से रिलीजन से आ रहे हो, तो हु आर यू टू डिसाइड कि कौन हम लोगों को सपोर्ट करेगा, कौन नहीं सपोर्ट करेगा. यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजन बेस्ड कमेंट नहीं करेगा. बट जो भी असामाजिक तत्व आके ऐसा बोल के गए कि लंगर एंड ऑल और बिरयानी एंड ऑल, तो उन लोगों के लिए दिस इज अ स्लैप टू देयर फेस कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिटी में खड़े हुए हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए. तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड कोई कमेंट करने का बात नहीं.
13: डोंट डिवाइड अस ऑन रिलीजन, डू नॉट ट्राई एंड वॉश योर डर्टी एजेंडा हियर. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट दिस यंग लेडी एंड दिस जेंटलमैन इज गिविंग हियर एट द स्टेडियम वेयर द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन. टुडे इज द 13th डे. आई वॉन्ट टू शो यू अराउंड, द क्राउड इज इंक्रीजिंग, बट बिफोर आई डू दैट, द सिचुएशन इज सो डायर लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इवन स्पाइडर मैन हैड टू कम हियर टू सपोर्ट दिस स्टूडेंट. क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम स्पाइडी है.
13: स्पाइडी है, यहाँ क्यों आ गए हो आप रांची में?
5: रांची में प्रोटेस्ट जरूरी है, सपोर्ट है, क्योंकि ये 13 सालों से इसका पेपर लीक हो रहा है और साथ में इसकी सीटें जो है वो बिक जा रही है.
13: तो आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ पे छात्रों की मदद करने के लिए आना चाहिए?
5: छात्रों के लिए स्पाइडर ही आएगा आगे, तभी तो आगे हम जेंसी है तो हम आगे आएंगे, तभी और हमसे जुड़ते हुए सब आगे आएंगे.
13: You know, it's quite interesting, and as I said, the situation is so dire that so many people are coming. They are in fact coming to show their protest. Let me show you around. You will see this entire space is, you know, packed. Yesterday, when I had come here, it was not as many people. It was raining very, very hard. And now, once again, on the top of these doles, there are a lot of young people, those who have come from all across. You would see them talking, sitting, and putting their voice out. Let me just show you around. On that side as well, it is just not under the tent. All across, there are these students, those who are standing here, a lot of people coming here to express their support. Families, parents, all of them are at this moment here. Ladies and gentlemen, let me also make one thing very, very clear. A lot of is being said, comparisons are being drawn between what happened at Jantar Mantar and what is happening here. These people have a very clear manifesto, a very clear demand. No political speeches, don't make religious speeches. We are here for the rights of the students, for employment, for jobs, and that's the agenda. Don't try and derail that. And that message should be heard loud and clear. Before we move on, because I've spent the entire day talking to these young men and women about what the problems are, and some of the testimonies are heartbreaking. But before we bring those down, there is some news coming in. An 11-member delegation has been formed, which is going to go and speak to the government. When are they going to speak to the government? We don't know that yet. But an 11-member delegation that includes 8 students, and apart from that, a technical expert. They also want, a lawyer. 9 students and 2 of them. They are the ones, those who are in fact going to go and speak to the government. This is the latest news which is coming in. They have released the names of the students as well. Let me show you around here. This is the stage where a lot of people, the 4 young students, 5 of them in fact, not 4, those who have been sitting on a hunger strike. Of course, the media are coming here and speaking to them. So you would see them on the stage, two women and 3 men, those who have been on a hunger strike for the past 4 days, and they are pressing for their demand. You know, I find it very, very fascinating every single time. Shibu Soren, one of the most respected tribal leader here in Jharkhand, and Shibu Soren's son, Hemant Soren, at this moment, is the chief minister. The father's poster has been a statue or a cutout has been put there just to give you a sense what these students in fact think and what these students have been asking as far as this entire protest is concerned. There you would see one of the students who is lying there. These are people, those who have spent 8 days, 8 years, 10 years preparing for these services, giving their blood and sweat as far as these services are concerned, but nothing so far has happened on that. Let me very quickly get Harbansh, our local colleague here. Harbansh, 11 logo ki committee ban gayi hai. अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता टाइम फिक्स हुआ है, कब बातचीत शुरू होगी?
6: जी देखिए, अभी जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है उसमें इन लोग का ये है कि 5 लोग को ही इन लोगों ने डेलीगेशन में बुलाया है. इन लोगों ने जो लिस्ट दिया है वो 11 आदमी का है, तो इस पर अभी सहमति नहीं बन रही है. लगातार जो है अधिकारियों का मीटिंग चल रहा है, मंत्रियों से बातचीत की जा रही है और बीच का रास्ता निकालने का कोशिश किया.
13: अभी कहानी फंसी हुई है, 11 ये लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 ही आए.
6: हाँ बिल्कुल, अभी जो मामला फंसा हुआ है इसी पे मंथन जो है प्रशासन के तरफ से चल रहा है. लगातार मीटिंग की दौर जो है वो चल रहा है और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है.
13: It started to drizzle again. It's been quite a few rainy days, but despite that, it has not stopped the young students, their supporters, to continue their protest. The latest which Harbansh is giving, and that's the big breaking news that we are bringing to you at this moment. There is a generator there, just stay here. The news is that the students have given 11-member committee, 9 students, 1 lawyer, 1 technical expert from their side, which will go and speak to the government. The government at this moment is not agreeing to 11 coming there. They want 5 people to come in. That is what Harbansh was telling us at this moment. So this is something that the government will have to resolve very, very quickly so that they can start the conversation as well. Before we move on, ladies and gentlemen, today in the afternoon, I spoke to a few of the students, and as I've been saying, the anger is genuine, the frustration is genuine, because it is just not about the 14 JPSC or the JSSC or GCL paper which has the allegations or irregularities on them. They are saying for the last 26 years, every single examination is riddled with problems, the system is rotten, and these students feel frustrated, even helpless at times. Listen in to few of those voices which is coming up on the show right now.
8: जगह पर इस तरीके के आपको कई बार बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है सुनना कि कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी इस उम्मीद में कि एक सरकारी नौकरी जो है जेपीएससी से, जेएसएससी से, सीजीएल से और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं कि उनको मिलेंगी, और जब वो ये सुनते हैं कि उनसे कम नंबर वालों को कहीं ना कहीं जुगाड़ से पैसा देकर नौकरी खरीद ली गई है, उनके उनके ऊपर परिवार के ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है. क्या नाम है भाई तुम्हारा?
16: सर मेरा नाम कोसीलाल प्रसाद है हुआ, और हम गिरिडीह जिला का रहने वाले हैं, और वो पिछड़ा इलाका है सर. इसमें से हम 15 साल से झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहा हूं सर, और दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड को चुने सर. शायद हम सेंट्रल को चुने रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते. जितने मेरे दोस्त हैं जो सेंट्रल को चुने वो आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे हैं. हमने सर बहुत मेहनत किया इसके लिए, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या पीजीटी हो सर. देखा जाता है कि हर एग्ज़ाम में 0.33, 2 नंबर, 1 नंबर से छटा जाता है, छट जाते हैं.
8: तुम कितनी कितनी बार कितने नंबरों से?
16: सर हम अगर पीजीटी का फाइनल डीबी करवाए हैं, उसके बाद उसमें हम मात्र, यहाँ पे झारखंड सरकार का ये है ना सर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के तहत जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना, उसके वाड़ में लोगों का भविष्य बेचा जाता है. पता नहीं चलता है कि लोग कितना क्वेश्चन सही किए और कितना मेरा सही हुआ. ये नॉर्मलाइजेशन के आड़ में क्या होता है कि सीट बेच दी जाती है, लोगों का नंबर डायरेक्ट बढ़ा दिया जाता है.
8: तो ये इसी सरकार में होता है या मतलब जब से पेपर एक के बाद एक सरकार कोई भी हो ये इस तरह का सिस्टम
16: ऐसी सर? ये झारखंड में जब से बिहार से झारखंड अलग हुई है तब से ये देखने को मिला है
17: सर. यहाँ पे झारखंड में रेट फिक्स है. अगर गांव, हम लोग गांव देहात से हैं,
14: अगर पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो, एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा, नौकरी खरीद लो, सरकार तो बेच रही है, तुम क्यों पढ़ रहे हो?
8: आम चर्चा होती है,
14: आम चर्चा गली मोहल्ला में चर्चा है सर, इसमें से अधिकतर खेला है कि यार पढ़ो मत। जो हमारे गांव के बुजुर्ग भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उनके कान में भी चल गया है कि यहां पे सीट खरीदा जाता, पढ़ो मत,
8: एक दो जमीन बेचो
14: दो कट्ठा और जाके सरकार को पैसा दो, आराम से नौकरी करो, पढ़ो, 20 साल एज मत खराब करो बाबू, जमीन कहीं बेच दो और सीधे जाके नौकरी लो। मेरा नाम राजकुमार रवानी हुआ सर, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हूँ, मेरा एज 25 हो रहा है, 35 वर्ष हो रहा है सर। यहाँ पे क्या 35 ईयर हो रहा है, हाँ। यहाँ पे क्या है, ये झारखंड सरकार में क्या है, खेला क्या है?
8: कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो?
14: मैं सर 2006 में मैट्रिक किया, उसके बाद ग्रेजुएशन,
8: 20 साल हो गए
14: जी, 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आज तक
8: 2009 में आपने ग्रेजुएशन किया होगा ना,
14: 2013 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद
8: मैट्रिक किया,
14: उसके बाद मैंने उस टाइम से मैं कंपटीशन में लगा रहा,
8: अभी तक से लेकर अब तक 13 साल हो गए
14: जी सर, अब तक मैं अभी तक से तैयारी करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं सरकार के कहां दूं और नौकरी कहां से खरीदूं सर?
8: मैं ये समझना चाह रहा हूं आप लोगों से, इतने इतने साल कोशिश करते हैं नहीं होता है, तो सरकारी नौकरी का ऐसा क्या मोह है
17: सर? झारखंड में और कोई ऑप्शन है नहीं, झारखंड में वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि आपको ऐसा भी कुछ नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया हम लोग को एजुकेशन में कि कुछ आपको टेक्निकल कर सके।
8: लोगों को ये समझना चाहिए कि क्यों सरकारी नौकरी के लिए,
17: तो वही है ना कि कोई ऐसा
15: है ना, हम बता रहे हैं आपको, मेन क्या है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स किए हैं, जैसे इंजीनियरिंग किए हैं, नॉइड मेडिकल किए हैं ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन आप सिंपल ग्रेजुएशन सिंपल पीजी किए हैं ना, आप बीएड किए हुए हैं, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए 10,000-8,000 रुपये आपको सैलरी देगा, आप कीजिएगा पीजी करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, बीएड करके, आपको 8,000 में नौकरी रखेगा, कीजिएगा आप। बात होगी ये हो गया ना कि अब ग्रुप डिस्कशन जब होता है लड़का लोग में, झारखंड में ये स्थिति आ गई है, अधिकतर पहले क्या होता था कि कोई क्वेश्चन पूछता था करंट से कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ करंट आता है, ज्योग्राफी में कहाँ से आएगा, हिस्ट्री में कहाँ से आएगा, अब ये स्थिति आ गया कि व्हाट्सएप में आदमी शेयर करता है कि क्वेश्चन आए लो तोर पास, क्वेश्चन पेपर है लो तोर पास,
14: एक दिन पहले
8: एग्जाम से एक दिन पहले,
15: एक दिन पहले, दो दिन पहले आदमी सर्कुलर होने लगता है, हर दोस्त हर ग्रुप हर कॉल चैनल में कॉल करने लगता है कि आपके पास क्वेश्चन आया का, क्वेश्चन आया गया,
14: एक सप्ताह पहले पता चलने लगता है कि केवल ये सीट इतना बिक रही है, ये 20 लाख में बेची जा रही है, ये 25 लाख में बेची जा रही है,
8: खुला चल रहा है।
15: आप चाय की टपरी में चले जाइए कहीं पे, आप चाय टपरी में चले जाइए, किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको खुलेआम आपको देखने को मिलेगा कि चार लड़का ग्रुप में बैठा हुआ है, बोलेगा कि ये लड़का के पास इतना क्वेश्चन आए, लो
8: पूरा सिस्टम है उसके ऊपर, कोई किसी को कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि बेच बाज के बन सकते हो, तो आपको तैयारी में भी यही है कि आखिरी समय तक कोशिश करते रहो कि क्वेश्चन मिले।
17: कर रहे हैं सर, सर जी जान रहे कि कितना करप्शन है, कितना हाई
18: लेवल, हर बार बताने जाते हैं सर मुख्यमंत्री को, तो बोलता कि हमको
8: संज्ञा, क्या पेपर लिए बैठे हो?
18: ये पेपर सर हम शुरुआत से लेकर के बैठे हैं कि हर बार हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने गए हैं और वो संतावना दिए हैं, बोले सर इस तरह से पेपर लीक हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए, रोकिए, तो बोलता हम संज्ञान में लिए हुए हैं,
14: ठीक है, ये जो बात है ये हमारे संज्ञान में है। अरे भैया संज्ञान में रख के क्या कीजिएगा, उसको उजागर कीजिए ना,
17: पर सचिवालय इतना बड़ा स्कैम
19: सर, ये अगर हम लोग कुछ भी बात हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे, मतलब ये सब बीजेपी वाले ने है, इसे पढ़े वाला नए को बीजेपी वाले, इन लोग का बीजेपी भेज दिया है,
14: स्टूडेंट को
19: बीजेपी, हम लोग कोई बीजेपी उजेपी नहीं, हमको बीजेपी हम का मतलब है बीजेपी से, हमको नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, मगर सरकार का साफ कहना ये सब कुछ नहीं, इसे बीजेपी कहा गया है, यहाँ झारखंड में साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, बाकी हम लोग प्रूफ देते हैं कि ऐसे ऐसे एक ही सेंटर में पीजीटी में पास कर जाता है प्रूफ के साथ, मान लीजिए 20 सेंटर बनाया, 5 ही सेंटर से 80% बच्चा कैसे पास हो जा रहा है, जब बच्चे प्रूफ के साथ बात करता, नहीं नहीं नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग नहीं पढ़ता है नहीं पास करता है इसीलिए तुम करते।
8: अगर ये नहीं ऐसा ही रहता है, इस बार उम्मीद है सरकार सुन रही है कुछ
15: सर, सुनने के बाद अब पता चलेगा होगा क्या निर्णय लेगा, वो सरकार पे डिपेंड पड़ता है, हम लोग तो अपने लगे हुए हैं
19: सर, अगर हेमंत सरकार नहीं सुनी ना तो ये गर्त 26 के बाद और 26 साल में भी नहीं सुधरेगा, ये अभी लास्ट मौका है, सरकार अगर अभी नहीं सुनी तो उम्मीद नहीं है कि झारखंड को सुधार पाएगा, इसलिए सरकार को ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अभी लास्ट है, एक बार स्टूडेंट का बात मान लीजिए, आपका झारखंड निकल अच्छा
14: यहाँ से जाएंगे नहीं, जब रद्द करेगी, रद्द करने के बाद हमको CBI जांच चाहिए, CID जांच तो सरकार की जांच है, हमको तो सबसे पहले वो रद्द करे, रद्द करने के बाद CBI जांच करे, तो ही हम लोग यहाँ धरना से हम लोग यहाँ निकलेंगे, नहीं तो यहाँ ना था, चाहे जान भी चले जाए हम लोग डटे रहेंगे।
17: वैसे संतावना देखे तो हमेशा भगा दिया जाता है
14: सर, खुल्लम खुला कि अभय तिवारी PGT में पकड़ा गया और CGL में पकड़ा गया बेटा, तो फिर रद्द करो ना, फिर लेट क्यों कर रहे हो, उसको रद्द करो,
19: जब दोनों में बैठा हुआ वो पहले आप पीजीटी टीचर था इंग्लिश में, फिर उसको छोड़ के फिर चल गया बीएसओ में, चल गया सीजीए 4800 ग्रेड पे छोड़ के सीधे 4200 में ग्रेड पे में गया और दोनों पकड़ा गया, तो फिर सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही है? उसको रद्द किया जाता जब तक रद्द नहीं करेगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, रद्द करना पड़ेगा।
8: ये गुस्सा जो है, दिस इज द एंगर एंड व्हाट ही सेड, आई वांट टू लेट दैट बी द लास्ट वर्ड, दिस इज द दे बिलीव दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू इन फैक्ट मेक एन अर्नेस्ट अफेयर, टू मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट, लिसन टू दीज वॉइसेस, कैंसिल द पेपर एंड ब्रिंग सिस्टमिक रिफॉर्म्स सो दैट पीपल आर नॉट हियर, दो साल बाद फिर से यहाँ ना बैठना पड़े। एंड दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज पीपल, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स are here and determined that till the government doesn't in fact heed to their demands, they are not going anywhere. And at least that's the message that the Chief Minister should take very, very, very seriously.
13: From the millennials to Gen Z to every generation that you can think of, people are here. Across, it's filling up. Thankfully, it's not rained, so you will see there are puddles of water everywhere. And like the water is filling the field, there are people, those who are coming and filling this as well. Some very interesting, in fact, posters, banners as well. You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro. Just to, you know, rhyme and to tell the language of the young people. आपको लगता है कि बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं हो रहा?
20: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है।
21: हाँ। सर, संवेदनशील बोलने में 2 मिनट का टाइम लगाती है तो वो सरकार ऐसे सुनेगी? और हम लोगों का जो मांग है वो और भी गति लेते जा रहा है, और हम लोग जब तक यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी।
13: आई वॉन्ट टू शो यू सम यू नो लेडीज एज वेल, दोज हू हैव बीन हियर, आपसे मैं कल भी बात कर रहा था जब हम स्टेज पर थे। अभी सरकार की तरफ से जो बात हुई है कि आप लोगों ने 11 नवंबर का अपना एक टीम का उत्तर, आपको कोई रिस्पॉन्स आया है सरकार से?
22: अभी तो नहीं पता है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। डेलीगेशन हमारे जाएंगे, उसके बाद हम आपको अपडेट कर पाएंगे।
13: उम्मीद है सरकार की तरफ से कि आपको वो बुलाएंगे, बातचीत हो पाएगी, स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो पाएगी?
22: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की क्या बात है, और सरकार को बात तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए, लोकतंत्र में बातचीत करना एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ही उन्होंने संकेत दिया था, तो वो बातचीत के लिए हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो जाएंगे।
13: You know, thank you. This spot is becoming a spot where not just about JPSC or JSSC, these are some young students, young people here, volunteers. What are you guys doing here?
23: Sir, हम लोग विकसित फाउंडेशन से है, रांची में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, और अभी भी लोगों को मोटिवेट करने आए हैं कि आप यहाँ आए हैं छात्र आंदोलन में, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो आज भी इन सब चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाए हैं, तो उन तमाम ऐसे छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पे आएँ, खाना बाँट रहे हैं, बिस्किट बाँट रहे हैं, किसी भी तरीका का सामान स्टूडेंट के बीच में बाँट रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ सफाई
13: रहती है, आप लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पे भी लोग डाल रहे हैं, ऑल ऑफ यू देन से, आप लोग खुद भी स्टूडेंट्स हैं राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोटेस्ट,
24: आपको क्या लगता है?
25: सर बिल्कुल, जो हो रहा है हमारे हित के लिए ही हो रहा है, क्योंकि एज अ यूथ एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगा, और देश जो विकसित भारत का हम लोग बात करते हैं वो एजुकेशन ही वो चीज़ अचीव कर पाएगा। तो अगर एजुकेशन में ही हमारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हमारा हक है कि हम लोग उसके लिए खड़े हो, उसके लिए लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट से ही क्यों ना अपना बात रखना पड़े।
13: आपको लगता है, रुक जाइए दोस्त, आपको लगता है कि जैसे आप यंग लोग हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक जंतर मंतर पे जेन जी की बात हो रही थी, उस प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, आपको लगता है कि उन लोगों को जैसे CJP हो, अजबीज दीप के हो, उन सबको यहाँ पर आपके सपोर्ट में आना चाहिए था? थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं क्या?
25: सर पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी,
13: दे आर नॉट पॉलिटिकल राइट, दे आर अ प्रेशर ग्रुप, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, शुड दे हैव कम हियर,
26: या दे शुड कम हियर जस्ट बिकॉज़ दे आर प्रेशर ग्रुप, सो आई थिंक एवरी प्रेशर ग्रुप शुड कम हियर। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल ग्रुप, बट रादर आई वुड बी सपोर्टिंग या प्रेशर ग्रुप शुड बी हियर।
13: और जो जो झारखंड के आइकॉन्स हैं, MS धोनी हैं, और जो बाकी लोग हैं, आपको लगता है उनको भी आप लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए?
26: लिटरली माही भाई अगर एक बार कहीं पे भी ट्वीट कर दे या एक्स पे भी एक अपलोड कर दे कुछ भी, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो जाएगा।
13: व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं?
25: मैं भी जर्नलिज्म का ही पढ़ाई कर रही हूँ।
13: जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रही
25: हूँ। हाँ।
8: तो आपको लगता है कि ये जो यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है ये रियल ग्राउंड की आवाज़ है जो सरकार को सुननी चाहिए?
0: एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है कि सबको सुननी चाहिए। जैसा कि हम लोग झारखंड में देख रहे हैं जितने भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हो रहे हैं, कभी भी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी भी ऐसा हो रहा है कि एडमिट कार्ड आ रहा है उसके नेक्स्ट डे एग्जाम के बारे में पता चल रहा है। और जितने भी लोग इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कितने सारे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम लोग वो सब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमें जितने भी झारखंड के लोग हैं फिर जितने भी लोग हैं सबको साथ में मिल करके अच्छे वे में इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना चाहिए।
1: सर, ये सवाल बस JPSC और JSSC तक जाके नहीं रुकता है, यहाँ की जो प्राथमिक शिक्षाएँ हैं कॉलेज में, कॉलेज स्तर पे चाहे स्कूल के स्तर पे, तो उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं।
8: सिस्टमिक प्रॉब्लम है, सिस्टम पूरा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है।
1: पिछले 2-3-4-5 साल से जो रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम देखने को मिला है कि ना उनका टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होता है, उनको आगे की पढ़ाई के लिए जिनको बाहर जाना है उनको भी एडमिशन्स वगैरह के लिए फेस करना पड़ता है। तो ये
8: आई हैव सीन दिस इन बिहार एज वेल, एग्जामिनेशन टेक्स ईयर्स, योर बैचलर डिग्री विच इज सपोज टू बी 3 years गेट्स ओवर इन 5 years 6 years, पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर results, and that becomes, it is actually playing with their future. Like I said, it's just not about only about now JPSC or JSSC or CGL. Young people from across the state are coming here because this stadium, the Jaipal Singh Munda Stadium, he's an icon in Bihar, in Jharkhand. This has become right now the important messaging point. And earlier today, I met some engineering graduates, engineer jo berozgar hain, unemployed engineers, those who have been, you are an engineer yourself?
2: Yes, I'm an engineer. I'm mining engineer.
8: And
2: we are preparing for the government exam, but it is not conducting very regularly. That's
8: because what. I spoke to some of the engineers, they said in the last 26 years, there has been only three times when the job has come.
4: Yes.
2: Actually, there are a lot of problems. If you are going to the very root, starting from the very root, but we need to fix this, all the things. Actually, it's just not only about this protest and that protest. It's just that it's kind of a total system failure. We need to understand how actually the system works.
8: Total system failure. The rot is very, very deep. Listen into some of the voices from the engineering graduates, because in a country like ours, parents think if you become a doctor or an engineer, your life is set. Alas, they should hear these voices. One would have thought that, you know, the tents of the students would be the focal point, would be where you would see the energy and all the protests. But now this entire stadium, this entire ground has become a corner for students who are coming from every nook and corner of Jharkhand with their problems. People, those who are hoping for government jobs, and it is no longer just about JPSC or the JSSC or CGL and others. There are engineering graduates, those who have also come before their demand. This has become now the focal point, and it also highlights the not only the employment situation here in Jharkhand, but also how the students, the young people, feel absolutely trampled. Their dreams being trampled in the system. The rot is so deep. आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं सब लोग, ये सब जरा सहयोगी अश्विन दिखाएंगे आपको ये ऑल दीज बैनर्स दैट दे हैव रिलीज JPSC AE वैकेंसीज, ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की वैकेंसीज हैं उसके लिए भी यहाँ पर भी क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे पहले बताओ क्या नाम है तुम्हारा भाई?
7: मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर जिले से आया हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और झारखंड के अलग अलग जिले से आए हैं।
8: कहाँ से इंजीनियरिंग करी है तुमने?
7: मैंने BIT सिंदरी धनबाद से करी हुई है, झारखंड का एकमात्र सरकारी संस्थान है।
8: कौन से उसमें करी थी?
7: सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे जितने भी है मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कैंडिडेट है, मैक्सिमम सिविल के हैं। तो हमारी जो वैकेंसी आती है JPSC के द्वारा आयोजित होती है, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर, और दुर्भाग्यवश हम ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 26 वर्षों में हमारी वैकेंसी सिर्फ 3 बार आई है, 2007, 2013, 2019, इसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं है। मतलब 7 साल से हम इतने अभागे हैं कि हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक विज्ञापन तक नसीब नहीं हुआ है।
8: मतलब एक तरफ जहां पे लड़ाई इस बात की उधर हो रही है कि JPSC के पेपर्स में धांधली, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की तो नौकरी नहीं आई है। धांधली तो छोड़ दीजिए, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि आप लोग जाके एग्जाम देकर अपनी नौकरी के लिए कुछ कर पाए।
7: एकदम सही बात है,
8: खाली रिक्त स्थान है।
7: हाँ, खाली रिक्त स्थान है, उसके लिए हमने RTI किया था। ऐसे जो आंकड़ा है, हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है पथ निर्माण विभाग, और जो पथ निर्माण विभाग है वो हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के अंदर वो मंत्रालय है, तो उनसे भी गुजारिश है कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान ले।
8: 539 नौकरियां
7: हैं, ये नौकरियां हैं, इसके लिए हमने RTI किया हुआ था, तो ये जो है RTI के बाद हमने जितने भी विभाग है यहाँ पे जो पेरेंट
3: पेपर वर्क सारा कर चुके हो, पेपर वर्क भेज चुके हो, पत्राचार को भेज चुके हो,
7: फिर RCD डिपार्टमेंट को जो पथ निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग, जितने भी विभागीय मंत्रालय हैं हमारे और विभागीय जो सचिव हैं उन सब के पास हमने जाके आवेदन दिया, अर्जी दिया है बाकायदा प्रूफ के साथ, ताकि हमें कोई मतलब खामी ना देखने पड़े।
8: ये बताओ कि अक्सर ऐसा ही होता है ना कि हमारे परिवारों में सबको ये लगता है कि इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट हो गया, सबके ऊपर प्रेशर ये रहता है कि इंजीनियरिंग कर लो सब जिंदगी बन जाएगा। आप सब तो इंजीनियर हो, इंजीनियर होने के बाद वो सपना जो लोग देखते हैं, तो आप लोग जब वो लोग पूछेंगे कि आपको क्या प्राइवेट जॉब नहीं मिला था या प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिल पा रहा था?
7: प्लेसमेंट में मिला था सर, लेकिन सैलरी बहुत कम थी, और हमारा जो डिपार्टमेंट है कोर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जैसे झारखंड है उसी तरह से यदि हम बिहार में देखें तो बिहार में रेगुलर रिक्तियां आ रही है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। लेकिन हम सब के साथ यहां पे होता है क्या कि पेपर में एक विज्ञापन आता है कि भर्ती जारी होने वाली है, तो हम सब उम्मीद में हो जाते हैं कि आएगी। उसके बाद जो आंकड़ा दिख रहा था हमें यहाँ पे RTI के माध्यम से, RTI भी हमने किया था, उसमें भी हमें देख के लगा था कि काफ़ी जो टोटल जो कैडर का स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसका आधा से ज़्यादा खाली है।
8: आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत गर्मी है यहाँ पे, उमस है बारिश की वजह से, कल बारिश में भी तिरंगा यात्रा निकली, इतनी गर्मी में भी ये लोग डटे हुए हैं। भाई कितने हो आप लोग, सारा ग्रुप कितना बड़ा है, कितने लोग हो जरा गिन लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सब इंजीनियर हो? हाँ, 17 18 लोग, 17, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 17 18 इंजीनियर्स हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ, यहाँ पर इतने हैं, आप सोचिए कि झारखंड में ऐसे कितने लोग होंगे?
21: हजारों की तादाद में ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है सर।
7: और हमने मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात की थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, तो हाँ नौकरी निकलेगी।
8: फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, नौकरी जो है वो एक एक पूरा आपका सामाजिक ताना बाना तय कर देती है कि आप कहाँ जाएंगे, किसके साथ उठे बैठेंगे, कैसे आपकी शादी होगी, कैसे चीज़ें होंगी। निराशा किस बात से ज़्यादा होती है कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो जाके क्यों नहीं कहीं और ट्राई करते हो, और जगह पर प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश कर लो।
4: सर अब जब आप तैयारी के जब 1-2 साल आप दे चुके हो ऑलरेडी इस फील्ड पे, ठीक है, अब जो आपको पता है कि सर पिछले बार मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ था, तो मुझे को पता है कि सर इस बार होगा तो 1-2 नंबर से हो ही जाएगा, ठीक है, तो फिर आप वैकेंसी आएगा तो फिर तैयारी करें इसीलिए, तो फिर अभी जाएंगे सर तो एज ए फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को एज ए फ्रेशर्स, ठीक है, तो सर इसी वजह से हम लोग फिर दोबारा उस फील्ड में नहीं जाना चाह रहे, हम लोग इसी चीज़ में जाना चाह रहे क्योंकि अपने लाइफ का प्रीसियस 2-3 साल हम इस फील्ड में दे दिए सर, तो फिर वापस से बैकआउट करने का हम लोग पास कोई अति वो नहीं रहा है।
8: ठीक, अगर सरकारी नौकरी नहीं निकलती मिलती नहीं है तो फिर क्या करो?
5: सरकारी नौकरी की सर तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अभी रिसेंटली
8: साल हो गए
5: सर, मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ JPSC की, और प्लस मैं इंजीनियर भी हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने जो लास्ट टाइम JPSC भी दिया था मेरा मेंस कुछ नंबर से रह गया था, इस बार जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स ऑलरेडी मेरा हो चुका है, बट इतनी धांधली हो रही है कि मतलब इसमें भी कुछ होने का चांसेस नहीं है।
8: कभी ये प्रेशर आता है कि अब हो गया बहुत छोड़ो?
9: नहीं सर, जब भी मोरल डाउन होता है तो परिवार वाले साथ देते हैं सर कि नहीं लगे रहो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसमें हो जाएगा सर।
8: यू नो दिस इज द स्टोरी विच यू विल कीप हियरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे अगर बात करूँगा तो इसी तरह की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। दुख सिर्फ इस बात का है कि एक फ्री और फेयर चांस नहीं मिल रहा है, एक ऐसा चांस नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी मेहनत करके ये कह सकें कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की और अगर नहीं हुआ तो हमसे बेहतर लोगों को नौकरी मिल गई। वो दिक्कत है कि जिसको नौकरी मिल रही है उस पर संशय है कि वो किस तरीके से नौकरी ले रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट दे डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन द सिस्टम, अ सिस्टम विच इज़ सो रॉटन, अ सिस्टम विच हैज़ सो मैनी प्रॉब्लम, सो मैनी होल्स, दैट even when somebody gets a job there is no guarantee that that person who has got a job has got that job on his or her credentials, and that is what they want a change with।
10: the truth to ye hona hi chahiye, to jin ji ne andolan nahi karna chahiye agar aisa mai karunga nahi, लेकिन कैसे करना क्या करना डेमोक्रेसी में इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
6: बिल्कुल,
10: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ ना होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए।
6: करेक्ट,
10: तब सब ठीक रहेगा।
6: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
10: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ।
6: ठीक। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए, पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर
10: इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना,
6: इसमें
10: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
6: जी सर,
10: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
6: आप क्या मानते हैं?
10: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
6: अरे वाह, बढ़िया है।
10: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
6: थैंक यू सर, ये आपने बताया इसलिए सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे
10: अब
6: ये सारे विषय के
10: और एक बात।
6: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
10: ये जो बातें है ना
6: जी,
10: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
6: जी।
10: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
6: क्या बात है, वाह। अभी आपने एक चीज बताई जैन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एडुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर, एंड देयरफॉर आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस सर कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है। तो सर बेटी गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहाँ यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की? तो सर ये एक सर दूसरा इसमें खाली दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो सर शिक्षा, मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एजुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर?
11: पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं दो तीन बताऊंगा।
6: जी सर।
11: पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है
6: जी,
11: वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूं, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान है हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया, तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। तो गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन द टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में आते हैं, नहीं बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोले ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे, 15 साल हो गए, अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना, ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी।
6: थैंक यू, थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एडुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में, ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है? सर तो ये मैं मानता हूँ, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लेकार्ड लिया था, नॉट फॉर CJP, नॉट फॉर BJP, आई एम फॉर एडुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पोलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमेटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
11: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
6: बढ़िया है,
11: हम तो
6: बढ़िया
11: एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं
10: कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
6: बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा।
10: मिल जाएगा,
6: अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी रेजोनेट्स विद, हु बिलीव्स ट्रूली इन द कॉज ऑफ एजुकेशन।
10: यस,
6: थैंक यू। पर सर, एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है, उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं जो आंदोलन में भी देखा गया वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था, तो वो सर 100 बॉल में एक रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है, वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी ये जो 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह, तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका?
10: आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है, ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोज वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए।

0: और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तो तभी ये काम होगा।
1: सर, अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया जैसे, मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले, तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए?
0: अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वी यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट, ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा।
1: दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। यहां पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन, और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन सिविल टू सिविल, सिविलियन टू सिविलियन टाइज इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन अदरवाइज? शुड दे कंटिन्यू एंड इफ सो हाउ?
0: इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वी हैव टू गो विथ वॉट एवर अवर गवर्नमेंट मिलिट्री डज, but that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China people say that for 2000 years Bharat has given us some values, and Pakistan was Bharat not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not the way, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease and we have to be one. Because humanity is one.
1: Oh, lovely. Humanity is one. And therefore, sir, I think Bharat can be both Vishwa Mitra and Vishwa Guru in that sense. And we can hopefully unite the world, because we are not looking to conquer any other country, but we are looking to unite. So, sir, spasht puch leta hu ek bar. Aaj ki tarikh mein civil society ko Pakistan aur Chin के जो स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल सिविल सोसाइटी है उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाँ या ना?
0: नॉट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आई टेल यू।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
12: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
14: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी चर्चा होती है. व्हाट इज योर टेक ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट शुड समाज डू एंड व्हाट शुड सरकार डू अबाउट दिस?
1: नाउ एक माइंडसेट हमको बदलना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली जॉब्स, इट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज ऑल्सो स्किल्ड वर्क. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं है. अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है, मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ, मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खाके मैं पेट भरता हूं, लेकिन मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरे पास कैश है. उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है. ये हमको, इसको कहते श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, वी हैव टू रिगेन दैट. वो नहीं है और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम ऑफिस शुड बी देयर. एंड एवरीबडी रशेस एट द सेम डोर एंड नो वन गेट्स इन, व्हाइल देयर आर फील्ड्स वेयर इज वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल. I also see what we call menial jobs. Doing that, people have earned wealth. There are buildings, panthela wala, puncture wala, aise log. Ek bachcha 8th mein padhai chhod ke hotel mein kaam kar raha tha. Ek university ke registrar ne usko pucha, usne kaha mujhe padhna nahi hai, lekin kamana hai. तो क्या करना चाहते हो? पान ठेला. तो उसने पान ठेला चलाया. उस समय 8th में था, अब तो जवान हो गया, शादी लड़के बच्चे हो गए. 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी पान ठेला चलाते हुए. दैट रजिस्ट्रार ट्रेंड हिम फॉर 1 ईयर टू रन ए पान ठेला. ऐसे है, ऐसी एक उदाहरण. उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है, ही इज इन महाराष्ट्र. ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र. तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए. सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है, लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृत पान चाहिए, रोज ये चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े. तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया. और हमने छोड़ दिया ने, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए. जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है. हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए.
0: आप बढ़िया आपने बताया ये. पर रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर. और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन. बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है. I am just following up on that, क्योंकि आपने ये बोला है. तो for general population sir, the thing is sir, reservation बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है. And actually जो top 1% of SC ST है sir, they have become the creamy layer, जैसे OBC में हुआ है. और sir वो ही सारे reservation ले लेते हैं. तो general category के बच्चे जैसे मैं हूँ sir, merit में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था, पर merit में अच्छा था, पर sir cut off list में मेरा नाम last आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक इट इज अ, इट शुड बी लाइफ लॉन्ग, और डू यू थिंक नाउ इट इज परहैप्स टाइम इन ऑर्डर टू कर्टेल रिजर्वेशन एंड ब्रिंग इट बैक बोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन सर?
1: आई विल नॉट आंसर यू डायरेक्टली, आई विल आस्क यू टू गो टू व्हाट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थॉट अबाउट रिजर्वेशन. इफ ऑनेस्टली

0: we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उन उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशन दैट दिस इज फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इंप्रूव अवर सेल्फ एंड मेक दिस यूजफुल फॉर अदर्स दोज हु हैव गॉट येट. ये वहां स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए. इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए. सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे. लेकिन इसकी राजनीति हुई इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है. वास्तव में सामाजिक एकता के लिए ये मेजर लाया गया है. वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु वील्ड दिस सोर्ड दे आर वील्डिंग इट रॉन्ग वे इंटेंशनली. अनलेस दैट इज क्योर्ड आई डोंट सी एनीथिंग.
1: आई एम सो ग्लैड दैट यू सेड दिस. कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक यू आई एम श्योर द कंट्री इज लिसनिंग. बट एक आखिरी प्रश्न जो था वो पर्यावरण पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन आर कॉन्फ्रेंसेज. 108 कॉन्फ्रेंसेज करते हैं सर एक साल में, आप जानते हो, और बाद में ये आखिरी का कार्यक्रम होता है. तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एवरीबडी इज वेरी पैशनेट इन जेन जी एंड जेन अल्फा, एंड दिस इज अक्रॉस. मुंबई में भी है, मदुरई में भी है, ये छोटे शहर में है, छोटे बड़े शहर में सेम समस्या है. वो लोग बोलते हैं कोई भी सरकार है सर, भाजपा है या कांग्रेस है या राष्ट्रवादी है, जो भी है, जब भी हम लोगों को आवाज उठाना है कि आप पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो, यू कैन बिल्ड द रोड इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सरकार नहीं सुनती, तो सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आयु अभी जो बैठे हैं तो हमारी आयु है 15, 16, 17, 18, 19. तो आपका क्या सुझाव है? व्हाट शुड यंग इंडिया डू व्हेन दे बिलीव सो मच इन क्लाइमेट चेंज बट समटाइम्स गवर्नमेंट्स डोंट बिलीव एज मच इन क्लाइमेट चेंज?
0: गवर्नमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग. एनी वेयर गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग. इट हैज टू एक्ट इन सो मेनी प्रेशर्स. सेकेंडली द अवेलेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज इटसेल्फ अनसस्टेनेबल. दैट इज वाई दे हैव टू प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी गोल्स. एंड द ओनली कंट्री विच फुलफिल्स दैट गोल्स पर ईयर इज भारत. एवरीबडी एल्स टॉक्स ऑफ दिस पर्यावरण and never acts on it. We have to change the model. As you said, development can happen without harming Paryavaran. That is true. But that way is with us and we are not treading on it. So we have to change our development model. That is the basic thing. Without that, no government can act fully for the Paryavaran. Some lapses will be always there. Now, this requires a tremendous pressure, which should come from the society. If society has to create the pressure, society has to act on Paryavaran. So, possible successful way, I see that we should start from our own home, with small things. Jaise ek program ab hum leke ja rahe hain samaj mein. Pani bachao, plastic hatao, ped lagao. सो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर में पानी. अभी बहुत सी जगह आदत है खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और लाइट लगाना. फिजिक्स का क्लास चल रहा था तो ठंडी हवा आने लगी, इसलिए सब खिड़कियां बंद की, और अब गर्म होने लगा इसलिए पंखे चलाए. तो प्रोफेसर ने कहा दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. ऐसा हम कर रहे हैं. हम अगर अपने घर से शुरू करते हैं कि शावर के नीचे कितने कितने देर रहना, 45 मिनट एक घंटा लोग रहते हैं, 15 मिनट में पूरा काम हो सकता है, स्नान के लिए पानी कितना चाहिए, तो जो एक्सट्रीम पर्यावरणवादी है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके हाफ ए बकेट साबुन वाबुन लगा के सब, लेकिन ठीक है एक बकेट दो बकेट बहुत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, अनावश्यक लाइट कितनी होती, शादी ब्याहों में कितना एक्स्ट्रा वैगनजा होता है, ये सारी बातें हम करते हैं। एक तरफ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, और इसलिए क्या होता है कि हमारे कहने का प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अवर होम, तो अवेयरनेस होगा। अभी अवेयरनेस बहुत अच्छा आ गया है और बढ़ना चाहिए, इसके बाद समाज प्रेशराइज करेगा। नहीं तो क्या होता है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पहाड़ नहीं धसने चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करो, ऐसा कहने के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। अब दोनों चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए, तो फिर हमको मॉडल बदल के काम करना पड़ेगा। अगेन मॉडल बदलना है तो दुनिया के उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा तो पहले समाज में मॉडल चाहिए, तब किसी की हिम्मत होगी उस पर चलने की। यह सब करना पड़ेगा और यह स्टार्ट हुआ है, इनमें करो, ऐसा आपको नहीं करा, आप भी करो, हमने शुरू किया है, हमने ऐसे मॉडल्स भी खड़े किए हैं, डेवलपमेंट विद पर्यावरण, हमारा ग्राम विकास उसी प्रकार से चलता है। तो ऐसी कई बातें, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो देश भर के कई सारे आर्थिक दृष्टि से प्रयोग करने वाले लोग आए थे, तो अबाउट 500 वेयर देयर, यानी वेयर स्पॉटेड, उसमें से 39 को सिलेक्ट करके बुलाया, वो उनका वृत्त हुआ, उसमें सब लोग थे स्वयं करने वाले। तो ये शुरू हुआ है, हमको भी उसमें हाथ लगाना चाहिए। द टाइड विल टर्न वंस द ओपिनियन इज फर्मली प्लांटेड इन द पब्लिक माइंड एंड पब्लिक डज व्हाट इट कैन डू इन देयर ओन होम, तब बदलेगा, बदलना तो पड़ेगा,
1: बदलना तो पड़ेगा। एंड मैं मानता हूं जैसे आपने बोला पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक प्रेशर बना रहेगा और खुद वो लोग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली और पॉलिसी बनेगी और सिस्टमैटिक प्लानिंग हो पाएगा, ये आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये भारत में तो कुछ नया नहीं है, इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्शिपिंग द एनवायरमेंट मच। पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पहली बार देयर वाज अ हिम इन रिगार्ड्स टू प्रोटेक्टिंग नेचर एंड वर्शिपिंग नेचर एंड वी यूज टू वर्शिप नेचर बिफोर वी यूज टू वर्शिप गॉड्स। बट सर आई ओनली होप दैट जो आपने आज जो बताया है, क्योंकि आपने बताया है, बच्चे तो सुन रहे हैं बट एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो लिसनिंग अक्रॉस द कंट्री एंड आई रियली होप दैट द मैसेज स्प्रेड्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव मेंशनड अबाउट एजुकेशन, अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट ऑल ऑफ दीज इशूज एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड। बिफोर आई लेट यू गो, बिकॉज आई हैव यू, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है संस्था के ओर से और संस्था से जो सब जुड़े हैं, जो बैठे हैं उनके ओर से। 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, वॉट आर द 3 क्वालिटीज दैट यू थिंक लीडर्स ऑफ टुमारो शुड हैव इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड? 3 क्वालिटीज यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए।
0: देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल। तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना है। लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है, इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड, they work from within.
1: Sir, that is sorry to interrupt you, that is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here.
0: I don't see myself as leader, as a worker, but anyway, secondly, leaders behavior there are 5 qualities.
1: Ji,
0: शास्त्रीय त्यागी, पात्रे त्यागी रणे रागी भागी परिजनै सह. सो ही नोज ऑल द थिंग्स एंड ही एप्रिशिएट्स क्वालिटीज. पात्रे त्यागी गुणे रागी एप्रिशिएट द क्वालिटीज. ही शेयर्स भागी परिजनै सह शेयर्स विथ ऑल अदर्स वॉट एवर ही गेट्स कीर्ति प्रसिद्धि सक्सेस मटेरियल गेन्स ही शेयर्स. शास्त्रे बोद्धा ही नोज द साइंस. रणे योद्धा इफ देर इज स्ट्राइफ ही इज अ वॉरियर. प्रभु पंचगुणी भवे. दीज आर द फाइव क्वालिटीज ऑफ द लीडर्स. एंड थर्डली लीडरशिप इज टू लीड पीपल टू लाइट नॉट ओनली मटेरियल ऑल्सो स्पिरिचुअल. लीडरशिप इज टू क्रिएट लीडर्स. इट इज नॉट टू लीड माई सेल्फ ओनली. माई लीडरशिप टू क्रिएट लीडर्स. दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड वेन वी टेक द ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप. एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब फॉर लास्ट 15 ईयर्स. सो टुडे आई लर्न द एक्सप्रेशन फ्रॉम यू ऑफ व्हाट आई एम सेइंग लाइक दिस.
1: सर बस आप करिए करिए साथ में करते क्लॉकेट्स. अरे थैंक यू सर, आपने समय बिताया हमारे साथ. थैंक यू कि आपने ये सारे उत्तर दिए. गाइज बिफोर यू क्लैप समथिंग आई मस्ट से एंड यू नो यू कैन गेट द हाउस लाइट्स ऑन. सर मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहता हूँ दैट यू नो दिस कॉन्वर्जेशन अर्लियर वॉज नॉट अ कॉन्वर्जेशन. वी सेंट हिम द क्वेश्चंस. आई जस्ट गेव हिम द क्वेश्चंस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ हिम. अर्लियर इट वॉज सपोज टू बी अ स्पीच. एंड सर मैं खड़े रहकर ये बोलना चाहता हूँ आपके लिए प्लीज. अर्लियर इट वॉज अ स्पीच दैट ही वॉज गोइंग टू गिव एंड ही वॉज गोइंग टू गिव अ स्पीच एज सर संघचालक जी गिव्स ग्रेट स्पीचेस. बट आई सेड सर आज स्पीच के बदले में हम संवाद करते हैं और संवाद ऐसे विषय पे करते हैं जो युवा को पसंद है और युवा बात करती है. लाइक एजुकेशन, लाइक क्लाइमेट चेंज, लाइक LGBTQ+, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट. इश्यूज विच आर स्पोकन अबाउट बाय आर जेनरेशन बट समटाइम्स डोंट फाइंड स्पेस इन पॉपुलर डिस्कोर्स. द फैक्ट दैट we didn't give him the questions and I asked him all of these questions and he took all of them very willingly and with a smile on behalf of all the Gen Z and Gen Alpha. Hopefully aapke madhyam se ye bhi batana chahunga that perhaps andolan is not the solution to everything. There is an alternate way. It is called samvad. So samvad bana rahe. एंड सर आपका आशीर्वाद बना रहे संस्था पे और जेन जी और जेन अल्फा पे. ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे आई रिक्वेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा हु इज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हु इज जस्ट गॉट कॉमनवेल्थ गेम्स टू इंडिया अभी जस्ट शी इज वन इन ग्लास्को एंड कम बैक डॉक्टर पीटी उषा. कैन आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज कम अप. If the music's played, it's fine.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर NDTV 24/7। बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर NDTV। बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवरेज। बेस्ट पॉडकास्ट शो ऑफ द ईयर NDTV कंट्रोल ऑल डिफेंस। बेस्ट प्राइम टाइम एंकर ऑफ द ईयर सैयद सुहेल। बेस्ट फीमेल एंकर ऑफ द ईयर वसुधा वेणुगोपाल। बेस्ट ऑन ग्राउंड कवरेज ऑफ द ईयर ऑपरेशन सिंदूर कवरेज। NDTV, द नेटवर्क ऑफ इम्पैक्ट।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: The front lines of Kargil, the beauty of

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: Peer Masala, delicious, healthy, every day.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं
6: एडमिशन है। झारखंड है सर, झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए।
7: When Rajiv Sonam Wangchuk reached out,
8: सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है। देश का केंद्रबिंदु बना यह प्रोटेस्ट, या आप लोग भी पहल करिए और सोनू मांगचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं।
7: जंतर मंतर टू झारखंड, द पाथ स्टॉप्स हियर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाह मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और

0: Rena tu sataranga
1: Jo hona hai Wo to hona hi hai Rangile tu sada muskura Sada sada sada muskura
0: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re dekh Kaise bhi ho din Rang bana rahe
2: Bojo paints Rang bana rahe
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है
5: कुछ तो बात है इस दिल में
6: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
5: कुछ तो बात है इस दिल में
7: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
8: सरसों से सरसों From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
3: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है
10: को प्रेजेंटेड बाय बर्ज पेंट्स रंग बना रहे
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क गोल्ड के लिए हॉलमार्क
11: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क
12: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
5: Kuch to baat hai is dil mein.
13: Sab ke liye takhori laga.
11: Toh bhi baarish ke bina.
13: Ab thi. Rajdhani besan, swaad ke liye kuch bhi karega.
14: Rinko?
15: Haan ji.
14: Ye dekh.
15: Aage. Toh chale.
12: Sat Sri Akal biji.
14: Sat Sri Akal pitta.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सरकार
7: जहां मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: ब्रेड स्टिक आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: you know, problem-solving teaching. Have you seen the caliber of teachers? You don't run a proper train-the-trainer program.
1: So who is to be blamed for that?
0: Finish, please.
1: Who is
0: stop
1: to be blamed for that?
0: You constantly all, heckle.
1: Who is to
0: irrespective,
1: be blamed for
0: please
1: that?
0: Please stop.
1: I think the
0: enough
1: question
0: now
1: was directed to all.
0: No, enough.
1: No, no, no.
0: Wait,
1: you can't, shut
0: talking
1: me. You cannot shut
2: okay
1: me.
2: Okay, one at a time, please. Abhijit, finish.
1: Do not
2: yes
1: heckle.
0: Now, there
2: sir,
0: is the fundamental problem. We do not invest in human beings. We invest in buildings out here. Okay, you need a train-the-trainer program. But then, look at the input phase. The input phase is based on standardized tests. There is no problem solving involved. You know, there is several newspapers
3: well
0: have run articles about how 97% of Indian engineers
1: May I come in?
0: Cannot problem solve. You have a chronic comprehension problem.
3: Thinking. Mm. There is no critical
0: zero
3: thinking
0: critical
3: at
0: thinking
3: all.
0: Zero and critical
3: that
0: thinking is actively punished in this
2: so
0: country.
2: But so, you know, the problem okay is we don't even address these
0: we
2: larger
0: address
2: issues no because okay you
0: we
2: go for knee-jerk solutions. Yeah. Right now, when it was about NEET, you said, let's get this resignation, and then that becomes a precedent.
1: So
2: then every non-BJP government will be looked at
1: so
2: with those same standards.
1: 30 seconds.
2: It's as simple
1: 30
2: as that.
1: Seconds.
2: That's where the politics comes
1: 30
2: in.
1: Seconds.
2: I want to come to this young man. Yes.
4: सर मेरा नाम साहिल है, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। सर देश में जो चीज़ें पहले पत्रकारों के साथ होती थी कि टैग देना, वो प्रोटेस्टर्स के साथ हो रहा है। क्योंकि हम क्या ये मान ले देश में, मैं राजनीतिक लोगों से नहीं पूछूंगा सर, त्रिपाठी सर आपसे और अभिजीत सर आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या इस देश में ये मान लिया जाए कि सरकार कोई भी हो पेपर कोई भी ढंग से नहीं करा सकता? क्योंकि आप उस प्रोटेस्टर्स के अंदर देखते हैं कि कांग्रेस कितनी है, भाजपा कितनी है, आप उसके अंदर दर्द देखिए ना, आप उसके अंदर देश देखिए कितना है। क्योंकि जब आप देश देखना शुरू करेंगे तब आपको महसूस होगा कि जब वो बाप अपनी बेटी को 400 किलोमीटर दूर पेपर ले जाने के लिए ले जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो दर्द बराबर है हर जगह। तो इसको राजनीति के चश्मे से हटाकर मुझे इतना बता दो कि क्या इस देश में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्या अकाउंटेबिलिटी आएगी, या हम मान ले कि दिस इज द न्यू नॉर्मल?
2: दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद। डू नो विवेक सालस, यू हैव टू आंसर मी
0: सिंस वी कैन आंसर। प्लीज गो टू माय ट्विटर टाइमलाइन, आई हैव बीन रेजिंग दिस फॉर 7 years नाउ।
5: I'll tell you what is the problem.
0: Can I finish?
2: No, no, no.
0: Please.
2: And what
0: this needs to be reformed. I have been calling for Dharmendra Pradhan's resignation for 2 years now. 2 years, not 7 months, not since UGC, because of the compound screw-ups that have happened in that ministry.
1: Just
0: if the man is not interested in ministry, he had no business occupying that position.
2: Okay.
0: So nobody made this political till the CJP came in. Hmm. All right, the CJP made it political.
2: And you know, I think Vivek Salis, this is what we started by asking, that when you start branding that this is a Gen Z whose voice we are going to listen to, and this is a Gen Z we are quietly going to ignore, or we are going to give them platitudes like we have taken cognizance, or we are going to say things like paper leak to hua hi nahi hai, ye pagal hai. जो बोल रहे हैं पागल, वाटर कैनन कर दो। विवेक सालस
5: फर्स्ट
4: अभिजीत दीपके ने कहा हम प्रेशर ग्रुप है, तो ये इंसल्ट नहीं है विपक्ष की, जिस जो काम विपक्ष का होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जितना नुकसान
0: इस देश में विपक्ष कहाँ है?
4: अगर आप नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं, अगर वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक कमजोर विपक्ष भी लोकतंत्र के लिए उतना ही बड़ा खतरा है, ये हमको समझना पड़ेगा।
0: मैं सिंपल सा आपसे बोलता हूँ, If God comes and asks you for a wish, I think God came to Narendra Modi and asked him for a wish, and he said, I want an opposition leader like Rahul Gandhi.
2: Okay, Vivek Salas and then Harshvardhan Tripathi, just a second.
5: Thank
2: Vivek
5: you for taking the initiative against, Dharmendra Pradhan. I'm very happy to hear that. The problem...
4: You have put the party of the Pravakta, you have put the Samajwadi party of the Pravakta, you have to see this too, there is an election after 6 months. कैसे जाएंगे रांची चले जाएंगे तो पंजाब नहीं जा पाएंगे, रांची में बैठ जाएंगे तो यूपी में नहीं बैठ पाएंगे, इंडिया अलायंस बैठा है यहाँ पे, जो हर बार बदल जाता है। लोकसभा चुनाव में इनकी दुकान एक साथ होती है, और जब
1: आपका सवाल
4: भारतीय जनता पार्टी है तो अलग अलग रेडी लगती
2: है।
5: सीधा सवाल का सीधा उत्तर ये
2: एज
5: फार एज रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, एज फार एज एजुकेशन, एक मिनट मैं मुझे बोलने दीजिए, द प्रॉब्लम हियर इज that the central government or the government in the center is spending only 2% in the education system, you know.
1: Absolutely.
5: And you want to compete with Chinese, you want to compete
2: sir,
5: with Europeans, you want to compete with Americans.
2: You need why to, can't you
5: Ranchi,
2: go bilkul to
5: jayenge, wo to main बैठते ही बोल चुका हूँ, जरूर जाएंगे रांची, क्यों नहीं जाएंगे
2: सर? ये तो राम मंदिर की तरह हो गया, बुलावे का इंतजार कर रहे हैं क्या कि जब राम मंदिर से बुलावा आएगा तब जाएंगे हम? वैसे ही रांची हो गया, राम मंदिर एक तरफ रांची हो,
5: राम मंदिर
2: अभी तक बुलावा नहीं आया।
5: राम मंदिर के चोर तो बैठे ही हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो हम देख ही रहे हैं। और आरएसएस ने क्या कहा मैं भी बता दूं, टीजी मोहनदास ने क्या कहा आपको याद है? उसने कहा मेरा बस चलता तो मैं घेराबंदी करा के सबको गोली मरवा देता।

0: और दूसरी बात सुन लीजिए,
1: ओके,
0: उन्होंने कहा जो लड़कियां वहां थी दे आर फॉन्ड ऑफ रेप, क्या जवाब देंगे ये? देंगे?
1: जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, उसका खुद संघ ने जवाब दे दिया है।
0: कर रहे हैं बंबई में,
1: पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड,
0: क्यों बुला रहे हैं? इज एसोसिएटेड विद द आरएसएस,
1: अब
0: क्यों मोहन भागवत बुला रहे हैं जेएनसी को बंबई में?
2: हेलो सर, एंड good evening to all and thank you so much for this opportunity and I would like to I give a respect to each and everyone's opinion because everyone has their own thoughts of emotions. So sir, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो नीट प्रोटेस्ट हुआ था जो कि बहुत फेमस गया था सोशल मीडिया में, तो सर मैंने देखा कि जैसे जब स्टूडेंट पे लाठीचार्ज या जब वांगसुक जी की जो लंबी जब प्रोटेस्ट हुई थी तब जाके ऑपोजिशन के सारे लीडर गए थे, तब जाके सब गए थे। अभी उनको पता चल गया कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद स्टूडेंट पे क्या बीती होगी, क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से झारखंड में इतनी देरी क्यों कर रहे हो आप? वहाँ पे जब चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर जब अटैक किया जा रहा था, सब जब चल रहा था, तब सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन वाले चले गए थे और उसमें से उन्होंने अपनी भी ब्रांडिंग कर दी कि दैट वी विल टेक एक्शन इन दिस, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, दे आर रॉन्ग, दे आर डाइट, राइट, राइट। सो बट नाउ द झारखंड, व्हाई यू आर वेटिंग?
3: सो नोबडी,
2: व्हाई यू आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर दैट?
3: नोबडी इज सेइंग दैट द स्टूडेंट्स इन झारखंड शुड नॉट बी सपोर्टेड, ऑल द स्टूडेंट्स इन पंजाब और फॉर दैट मैटर एनीवे,
2: राइट? स्टूडेंट्स आर सेइंग,
3: वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन,
2: व्हेन यू टॉक अबाउट
3: that's in education, it is the BJP that is in power.
2: Yeah, see,
3: our education budget is literally a laughing
2: one line,
3: matter.
2: One line,
3: a matter,
2: one line
3: of,
2: I want to say
3: a
2: that
3: joke
2: I
3: out here. Our freedom press index to my little brother, to my younger brother out here, because I've been a journalist in three different countries, right? We are 151 out of 180 countries. We literally have had no freedom So the point is that it is the Bharatiya Janata Party.
4: She's asking it you is about Jharkhand. J-H-A-R-K-H-A-N-D.
3: Right. So Jharkhand ke saath entire opposition is standing. Right? Just because, they have not reached there as much as they have reached in the Jantar Mantar does not mean that they are not the students of Jharkhand.
5: That is not Jantar Mantar. Because Jantar Mantar mein jo log gaye the, आज वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, लेकिन झारखंड जाके वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएंगे। मैम को उतनी लाइक्स, इतने कमेंट्स, मैम आपको उतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलेंगे झारखंड में।
3: स्किल डेवलपमेंट और एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग।
4: हुडा सरीवाला, आई थिंक यू नीड टू लिसन अगेन टू व्हाट दिस यंग मैन सेड, बिकॉज नाउ देयर इज दिस न्यू मीम सेइंग व्हाट हैपेंड डार्लिंग, Ranchi is not aesthetic enough for your Instagram story.
5: Jharkhand is not enough aesthetic for you, na? Ma'am, the reason is you guys are not going to Ranchi because Ranchi ki social media reach Jantar Mantar ke barabar nahi hai. जंतर मंतर, क्योंकि जंतर मंतर में जो लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं अब वो बेचारे उतने कमेंट और लाइक्स, आपकी पोस्ट पे भी उतने लाइक नहीं आएंगे जब
3: अपने हाई हॉल में बैठ के स्टूडेंट्स का ख्याल आ रहा है। I think that is the biggest development out here, number one. Number two, everybody stands with the students of Jharkhand, right? वहाँ पे बच्चों के साथ
4: stand out in video call.
3: Not being shock beaten.
4: You stand with students via video call.
3: Girls are not being hit with danda and lathis on their private parts.
4: Waiting for that to happen before you actually take the flight and go there.
3: Jharkhand government is not going to do that. They are engaging with the students. They're talking to the students.
5: They are not engaging.
4: Basically, you're saying that the students in Jharkhand, they're actually committing a mistake by being peaceful.
6: Yeah, exactly.
4: Because the only way they will catch people's attention is by engaging.
3: It was the Delhi police that did the entire barbarta, the violence from the Delhi police and the rapid action force people. It was the Bharatiya Janata Party. It was Amit Shah who had asked these people, the Delhi police, to do this violence against the students.
4: Okay, go on, this right? young lady, go on, we go on, go on. speak, bolo, nahi to
7: ma'am, you all are fighting for anti-CJP and CJP. Why are you all blaming BJP? Why are you not doing anything for the Jharkhand students?
3: Whom does the education department belongs to?
8: Excuse me, ma'am.
3: Which
8: ma'am, agar aapki party Jharkhand mein pahunch bhi jayegi, to aap in sab se resume ki accountability ki baat kar lenge.
6: Bring the anti-cheating paper bill.
3: Absolutely.
8: Because what is the cause ki kisi bhi government ke time pe paper leak hote hain, wo outsourcing kar deti apni response. प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्सिंग कर देते हैं और फिर आप बाद में रेजिग्नेशन हर गवर्नमेंट से मांगते हैं।
3: सो पेपर लीक के टाइम पे झारखंड प्रोटेस्ट इज अ राइट प्रोटेस्ट, राइट? इट इज बाय द स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी स्टैंड्स बाय द स्टूडेंट्स। द पुलिस इन झारखंड इज नॉट गोइंग टू डू द सेम वॉयलेंस दैट हैपेंड इन दिल्ली एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अमित शाह,
8: बिकॉज़ मैम उन्होंने अपने उस पे लगा रखा है।
3: नंबर 2, द गवर्नमेंट इज इन एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स, दैट इज द बेसिक कोर डिफरेंस बिटवीन द झारखंड एंड द जंतर मंतर प्रोटेस्ट।
4: 30 सेकंड्स हर्ष, सिंपल पॉइंट का ये जवाब दीजिए. वो कह रही है कि हमारी हमारी सॉलिडारिटी की जरूरत अभी रांची में नहीं है क्योंकि वहाँ लाठियाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ पर पैलेट गन्स नहीं इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ वायलेंस नहीं है. हर्षवर्धन
5: जी, सबसे
4: लेट इट मान दैट इज व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग.
5: झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होना, यहाँ मत खड़े हुई. झारखंड के छात्रों के साथ खड़े, यहाँ मत खड़े.
4: बैठ जाइए पद्मजा.
5: इस पूरी डिबेट में बच्चों ने जो कमाल की बात कही है, मुझे लगता है कोई भी जिन्होंने मुझे भी क्वेश्चन किया हो, ये सब के सब समझ रहे हैं कि ये नेता लोग बेईमानी कर रहे हैं. इन सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेट, वो वाला स्टेट, हमारी पार्टी, हमारा कोलिशन. और जो साहिल ने कहा वो सबसे जरूरी बात, आपको स्टूडेंट के मुद्दों पर बात करने के लिए भी नहीं समय मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है. और क्या जब संसद में इस कानून पर बहस हो रही थी किस पार्टी के किस नेता ने कौन सा सजेशन दिया, आप लोग जरा खोज कर देखिएगा.
9: मैम
5: क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने,
9: उत्तर प्रदेश
5: क्या चीफ दूसरे नेताओं ने, उन्होंने कोई ऐसा सजेशन दिया कि वो बेटरमेंट हो पाता? असली मुद्दा
9: जंतर मंतर, फ्रॉम जंतर मंतर यू सेड बी प्रॉमिसेस, वी आर विद यूथ एंड व्हेन एंटी एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस फैक्ट आया, आपने दो दिन हाउस में चलने दिया.
5: बड़े
9: प्रॉमिस किए हम यूथ के साथ हैं, उसके बाद जब प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस फैक्ट आया आपने दो दिन तक हाउस नहीं चलने दिया. मैम वी आर नॉट अ पपेट, वी आर आर्किटेक्ट ऑफ दिस नेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स.
4: And who only wants to do political point scoring? I think a lot of people here want to be heard. Very quickly, this young man.
10: Quick point, Padmaja. I have just one suggestion or one question. Your action speaks louder than your words. Okay. That is a very well saying. But CJP's or CJP's action does not shows the things you are saying right now. Like they, you are saying that they are going to be there, they are going to be there. But it's just one phone call and one video call from Wanchuk sir, and that's all. Nothing okay. more.
3: So okay.
4: this lady in purple, go on.
3: So ma'am, why wasn't there any lathi charges and police? You were saying that police harassment wasn't being done from the past 20 days. Like the protest was going on for so long, but that thing only happened on the day when there was no permission for to go to march to the parliament, but still they went. They were not students. We students were not there.
11: They did not deserve the lathi charges, right?
3: Ma'am, but it doesn't matter. I will stop you here.
11: I don't know if
3: I'm sorry. Sorry to say this. I'll stop you there. But we were there at the protest and we saw.
11: So
3: my father is a Delhi. It is in Delhi police, and I saw him. I saw him when he was being lathi. He was being sprayed in his eyes, and they were not students who were doing that.
11: पत्थरों से भरा ट्रक वहां पे था. आई वॉज देयर पद्मजा जी, आई वॉज देयर, आई सॉ,
4: यू नो, सो वाज शी, एंड सो वाज शी, सो वाज शी. ओके 30 सेकंड अभी जी, 30 सेकंड अभी जी, यू नो हु डज अरिवाला,
11: दिल्ली पुलिस के गुंडे आके वहां पे लड़कियों पे अटैक
4: कर रहे हैं. जस्ट अ सेकंड I think what is important is that even these kids who were also there can see that there were many people there. Yes, there were students. Yes, there were students. And yes, there were people who were taking advantage of what was happening and engaging in mischief. Now, one, you need to differentiate between the two. You need to differentiate between what happened. And anyway, all of that is now a subject of investigation. Agreed. My question simply was today about why the similar solidarity cannot be shown for Jharkhand. And I'll give the last 30 seconds to this young
11: Agreed.
4: Man. Last 30 seconds.
11: The opposition stands okay, very with quick Jharkhand. Point, Sonam Mangchuk ji gaye hai wahan pe.
12: Do you all have your smartphones on you? Okay, they took it away. Okay. I want you, when you go out, I want you to check the dates on which the TMC, Arvind Kejriwal, visited the students and when the rioting broke out. So if we go by this logic that you can only visit them after they are shot with pellet guns, then please see when the AAP went to meet these students.
11: Much
12: here,
11: before
12: well before the violence.
11: July.
12: Thank you. So why aren't you doing that there?
4: Okay. Final right. 30 so seconds, I'm please. Final 30 seconds to the student.
11: Aam Aadmi
4: Party is
11: not in
4: power. We're out of
11: time,
4: Jharkhand. Please. Yes.
5: Okay, so I have a very simple question. Please let me complete. The question is, as the paper leak has already done, the mission is totally successful. So why the people are even even here? Are you आप लोग ये क्यों चाहते हो डेट वाई अपोजिशन अपोजिशन को झारखंड में जाना चाहती है अपोजिशन झारखंड में क्यों जाए इवन इज इट इन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी
11: डेट
5: दे शुड कंपेंसेट टू द स्टूडेंट्स और ऑफ द झारखंड एट पेपर लीक
4: पार्टी तो कांग्रेस और जेएमएम है ना वहाँ पे तो इसीलिए तो सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है
5: इधर दैट व्हाई द आई थिंक ओके आई थिंक व्हाई द रूलिंग पार्टी इजंट कंपेंसेटिंग द स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज सिंपल आप अपोजिशन पार्टी
11: को क्यों नहीं एजुकेशन
4: फाइनली आई वांट टू जस्ट आस्क देयर इज अ होल मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस हियर आई जस्ट वांट टू डू अ शो ऑफ हैंड्स हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that the same solidarity that was shown at Jantar Mantar should be shown at Jharkhand?
11: Including me.
4: How many of you think that the Congress party and Rahul Gandhi in particular should take his Chhatro Ki Goonj to Ranchi?
13: At the protest.
4: And how many of you think that this is only politics by the BJP trying to pass the buck because they got cornered in Jantar Mantar? Chalo, abhi, oh, you also don't think that this
11: definitely,
4: is politics by
11: yes,
4: the BJP?
11: Yes.
4: All right.
11: Yes.
4: I am,
11: yes. Yes.
0: Asking me, but.
4: Okay. I asked for a show of hands across the board. But you know, the thing is very simple. That politics and partisan politics will continue irrespective of what the issue is. But when it is about the students sitting on the streets, the very least that they deserve is a shoulder to cry on, a patient ear to hear what their problems are, and solidarity from everyone across the board, irrespective of which party you belong to. In that hope, thanks very much to this lovely audience, gentlemen and Hooda Zariwala, for joining us today on People's Sansad.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
3: So many attacks.
2: The chaos and

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.